नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 7 अक्टूबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय पे सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में टीईपीए की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच टीईपीए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली।

0: हुई है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

静等。एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। ये विचार स्वामी विवेकानंद का है। ये था अब आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 334। इसमें आज आप सुनेंगे लंका कांड। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसका भाग 7। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार डॉक्टर पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 बजे और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 बजे सुनिए समाचार और त्रिवेणी। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2 बजे। आज आप सुनेंगे आलेख और स्वर चंचल वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। सुबह 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं गजल साम्रागी बेगम अख्तर, आलेख और स्वर यूनुस खान का। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम दिन में 11 बजे, दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप तय करेंगे हमारे साथ दिन में 1 बजे विविध भारती से, और श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार होंगे दिन में 2:15 पर और 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे होगा कार्यक्रम सखी सहेली। पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए आज के मेहमान में फिल्म लेखक निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का भाग 1। कार्यक्रम का समय दोपहर बाद 4 बजे। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच शाम 6 बजे सुनिए 5 मिनट के समाचार। शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा। जानकारी होगी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। संध्या रंजन का समय होगा शाम 6:35। जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे और 7:45 पर। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम राग अनुराग। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम हवा महल, इसमें आज आप सुनेंगे झलकी अक्कल के नाथ। लेखन धनेंद्र कुमार जैन, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। रात्रि 8:15 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि के 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग।
ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 334। आज आप सुनेंगे लंका कांड।

श्री राम तथा रावण की सेनाएं एक दूसरे से जूझ रही हैं। एक ओर श्री राम की जय जयकार तो दूसरी ओर रावण का जय घोष गूंज रहा है। वानर और रीच महाबली राक्षसों को मारते काटते धराशायी करके उनके उदर चीर देते हैं, फिर उन्हीं के मुंडों को अस्त्र के रूप में फेंककर औरों के कपाल फोड़ देते हैं। असुरों को कुचलते मसलते वानर मेघ के समान गर्जन करते हैं, जिससे रावण के सैनिक विचलित हो जाते हैं। अपनी सेना को त्रस्त और भयभीत देखकर रावण उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भयंकर हुंकार करता आगे आगे दौड़ता है। वानरों द्वारा फेंके गए वज्र के समान पत्थर उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। भीषण क्रोध से कांपते हुए उसने जब वानर और भालू सेना का संहार करना प्रारंभ किया तो वे त्राही त्राही कर उठे। पूरी सेना श्री राम की शरण लेने को जैसे भाग खड़ी हुई, लेकिन सभी दिशाएं रावण के भांति भांति के अस्त्रों से आच्छादित हैं। वानर भालू भागकर जाएं भी तो किधर, लगता है वे चारों ओर से घिर गए हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा हमारे सामने बैठे हैं। शेखर दादा, हमें बताइए कि आज की इस कड़ी में कौन सी भक्ति रचना को आप शामिल करेंगे और किन गायिका को आप इसमें शामिल करेंगे?
2: दरअसल मैं आपको उस कालखंड में ले जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि श्रोता इस बात को समझें कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जब हमें स्वाधीनता मिली और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया
1: जी।
2: तो उसी कालखंड में लोगों के उत्साह के साथ साथ एक और बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई थी
1: जी जी।
2: और वो घटना ये हुई थी कि एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था मीरा, और उस मीरा फिल्म में अभिनय भी किया और गाया भी एक दक्षिण की गायिका ने, जिसको उस फिल्म के पहले उत्तर भारत में कोई नहीं जानता था
1: जी जी।
2: और वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जिनको बाद में हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है
1: जी।
2: कि हम सब भारतीय कलाकारों में जिन्हें सबसे पहला भारत रत्न का पुरस्कार मिला वो थी श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी
1: जी जी।
2: तो मेरे लिए तो वो माँ सरस्वती का ही एक अंश है क्योंकि जितना सुंदर उन्होंने
1: जी जी।
2: गाया है, और श्रोताओं को शायद पता भी नहीं होगा कि जीवन के अधिकांश जब वो उनको एक बार बहुत उनका नाम हो गया सब कुछ हो गया तो फिर उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए
1: जी।
2: पर इससे ये अनुमान मत लगाइए कि वो निशुल्क कार्यक्रम करती थी। उनके कार्यक्रमों के कुछ नियम थे। वो कहती थी कि आप एक काम करिए, आप 2 लाख रुपए कैंसर एसोसिएशन में दान दीजिए और उसकी रसीद मुझे दिखा दीजिए, मैं आपके कार्यक्रम में आकर गाकर जाऊंगी।
1: बहुत बड़ी बात थी।
2: तो इस तरह की चीजें किसी संस्था के लिए या कैंसर पेशेंट्स के लिए, बहुत तरह की चीजें किसी वृद्धाश्रम के लिए, तो उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया था वो ये था कि एक कलाकार के नाते मैं अधिक से अधिक उपयोगी कैसे हूँ इस समाज के लिए। समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे नाम भी दिया, मुझे यश भी दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं समाज को कुछ लौटाऊं
1: जी।
2: तो ये एक बहुत अद्भुत चीज है। और जिस तरह के सहस्त्र नाम और जिस तरह के स्तोत्र और मंत्र आज हमें MS सुब्बुलक्ष्मी जी के मिलते हैं
1: जी।
2: लेकिन उस कालखंड की बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, 1947, और ये फिल्म का नाम था मीरा। नायिका भी थी और गायिका भी थी श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी, और उनका ये प्रसिद्ध भजन मैं चाहता हूं कि हमारे सभी श्रोता सुने। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना

0: मीरा फिल्म की ये भक्ति रचना थी और MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में हम सुन रहे थे। शेखर दादा, हमें लगता है कि हम सबका बचपन बड़ा हुआ है इस भजन को सुनकर। और इस भजन को सुनकर जो संगीत के विद्यार्थी हैं, शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी चाहे सुगम संगीत के विद्यार्थी, इन्होंने अपने गायन को समृद्ध किया है और शायद इसीलिए उन्हें संगीत की तपस्विनी भी कहा
1: बिल्कुल
0: जाता था।
1: बिल्कुल
0: MS सुब्बलक्ष्मी की जो स्वर साधना थी बड़ी समृद्ध थी, तो इनके गायन सफर की सबसे क्या खास बात आपको नजर आती है?
1: जो सबसे मुख्य बात है वो ये था कि जो भी अच्छे गायक हुए और जिन्होंने भी भक्ति संगीत पर बहुत ज्यादा जोर रखा, वो धीरे धीरे उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व जो है वो अपने आप आध्यात्म की ओर उसका रुझान होने लगा।
0: जी
1: तो ये एक चीज थी। और दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदरणीय MS सुब्बलक्ष्मी जी का अगर आप रेपर्टायर सुने भजनों का, तो उनके भजन, जबकि वो कर्नाटक संगीत की विदुषी थी, कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय गायिका थी,
0: जी जी
1: मूलतः वो उत्तर भारतीय संगीत की गायिका नहीं थी,
0: जी
1: परंतु अगर आप उनका रेपर्टायर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जब उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के सब राग गाए, अभी जैसे एक राग है बागेश्री, बागेश्री में आपको बिरले भजन सुनाई देंगे, बहुत कम लोग गाते हैं। आपको अधिकांश भजन हमारे यहाँ सुनाई देंगे खमाज में, भैरवी में,
0: जी
1: पीलू में, काफी में, ये सब राग है। पर भी जैसे ये राग है बागेश्री,

0: तो ये राग बागेश्री है और इसमें मैं चाहता हूं कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, निसदिन बरसत नैन हमार।
1: क्या बात है।
0: आप सुनिए, एक महान गायिका को हम क्यों महान कहते हैं, ये भजन सुनकर आपको उसका अनुमान हो।

0: एमएस सुब्बलक्ष्मी और राधा विश्वनाथन के स्वर में ये भक्ति रचना।
1: शेखर दादा, आपने सुनवाई हमारे श्रोताओं को। इसके बाद हम चाहते हैं आप कुछ गाकर प्रस्तुत करें।
2: मैं चाहता हूं कि एक पुरानी रचना है, शास्त्रीय संगीत की है
1: जी,
2: पर जब भी मैं गाता हूं तो मुझे लगता है कि ये शास्त्रीय संगीत कम है और भजन अधिक है
1: जी।
2: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की ये रचना है
1: जी।

0: वाह शेखर दादा, आपने बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया और हम सब सुध-बुध खोए आपको सुनते रहे, आपके स्वर को। और एक साधक का स्वर हम सबकी आत्मा तक बैठ करती है, तो आपको हम धन्यवाद कह रहे हैं इस रचना की प्रस्तुति के लिए। अब आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है, तो हम लेते हैं श्रोताओं से अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे हैं इन दिनों आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आज आपने सुनी। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक ही होंगे, हम भी ठीक हैं। आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। असद भोपाली ने इसे लिखा है, उषा खन्ना का संगीत।

उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया एक और ये गीत सुनिए, भरत व्यास के बोल हैं, गीत गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम हम हिंदुस्तानी।

जाने जो दे तू मुझे भईरे देर मेरे थक समाज तोहे आए ना लाज तू है दगाबाज दगाबाज धक धक धक धक धक धड़के जिया थर थर थर थर थर कांप के जिया और थक सकिया हट जा हट जा हट जा।

गोरी गोरी गोरी गोरी कमल किशोरी चंचल चकोरी एक गाँव की छोरी मैं हूँ नवल नवेली अलबेली नार समझाए थके तो है बार बार मन छुई मुई करू कौन जतन छूते ही हाथ सुन लाए बद मेरा तन मुरारी मत छू मत छू मत छू।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में दिल देके देखो इस फिल्म का गीत। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, सुरों में ढाला है उषा खन्ना ने।
4: रॉक रॉक रॉक बेबी रॉक।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और इस समय वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं मदर इंडिया फिल्म का गीत शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में। शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद का संगीत।

लाजवंती फिल्म का गीत अब सुनिए, गीता दत्त और साथियों की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: विविध भारती आप सुन सकते हैं एलेक्सा के जरिए भी। बस आपको ये कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती लाइव, और आप फिर सुन सकते हैं विविध भारती। आइए अब आपको सुनवाते हैं मालिक, इस फिल्म का गीत सुरैया और शमशाद बेगम की आवाजों में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, कुछ पलों का इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगाज करते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है रोशन ने, फिल्म का नाम ममता।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: लीजिए अब पेश है दो मतवाले फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, संतोष आनंद की रचना।

हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अगला गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में दुल्हन एक रात की इस फिल्म से। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, मदन मोहन का संगीत।

दादी माँ। इस फिल्म का गीत अब सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, तर्ज बनाई रोशन ने।

0: किया।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। अजीज कश्मीरी ने इसे लिखा है, ओपी नैयर का संगीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिक्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया

0: जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र भिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी का शीर्षक है माफी। श्रोताओं नमस्कार। जिंदगी में हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। गलती इंसान से हो जाना स्वाभाविक है। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो कभी कोई और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। ऐसे में मन में शिकायत, गुस्सा और नाराजगी जमा होने लगती है। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है तो जरूर उसे माफ करने का साहस दिखाना चाहिए, ताकि दिल पर कोई बोझ ना रह जाए। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसे क्षमा कर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। माफ कर देने का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं, बल्कि अपने मन को क्रोध, द्वेष और बोझ से मुक्त करना है।

0: का मिले।
1: जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो सबसे अधिक शांति हमें ही मिलती है। मन हल्का रहता है, रिश्तों में अपनापन बना रहता है और जीवन सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए जहां भी संभव हो क्षमा को अपनाइए। दिल में किसी के लिए कटुता कभी ना रखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा सबसे बड़ा साहस है। किसी की भूल को माफ कर देने से ना केवल रिश्ते बचते हैं बल्कि अपने मन का हर बोझ कटुता से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जहां संभव हो क्षमा को अपनाएं और मुस्कुराते हुए जीवन जिएं।

0: जाएगा।
1: क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, मन को सुकून देती है। इसीलिए क्षमा को अपनी ताकत बनाएं, प्रेम और सद्भाव के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें। जब दिल हल्का होता है तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और जीवन अधिक सुखद बन जाता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प हम सब भी लें, जहां संभव हो माफ करें, मुस्कुराएं और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो हम भी आज एक छोटा सा संकल्प लेंगे, नफरत नहीं प्रेम बांटेंगे, शिकायत नहीं समझदारी अपनाएंगे और जहां संभव होगा दिल से माफ करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों की रोशनी बिखेरते रहिए।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, कहते हैं हर सुबह अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है और हर गीत उस कहानी में एक नया रंग भर देता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में बातों के रंग और संगीत की धुनों के साथ कुछ खूबसूरत पल अपने नाम करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में और आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत फिल्म 83 से। इस गीत को गाया है प्रीतम और अरिजीत सिंह ने।
1: India in deep trouble now, having lost two matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैच देखने नहीं आऊंगा।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तीन फिंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम से भेज रहा है कि तीन फिंगर डालता है, ग्रिप छुपा।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे।

चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है जुबीन नौटियाल ने। देवश्री खंडूरी ने इसे लिखा है, गौरव दास गुप्ता का संगीत।

साथियों, कभी गौर किया है, एक अच्छा गीत सुनते ही हमारा मूड बदल जाता है। वजह गीत है या उससे जुड़ी कोई याद, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल सुनते हैं हसीन दिलरुबा फिल्म का गीत, असीस कौर और देवेंद्र पाल सिंह की आवाजों में। सिद्धांत ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। साथियों, इन दिनों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह चल रहा है। हमें ये सप्ताह हमें सिर्फ

चांद, सितारों और अंतरिक्ष यात्राओं की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये भी समझाने का अवसर देता है कि अंतरिक्ष हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। मोबाइल से लेकर मौसम की जानकारी, जीपीएस, संचार और आपदा प्रबंधन, कई सुविधाओं में अंतरिक्ष तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सप्ताह के माध्यम से नई पीढ़ी को ये सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है कि अंतरिक्ष की खोज केवल वैज्ञानिकों का विषय नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की संभावना से जुड़ी यात्रा है। 2026 की थीम रॉकेट रिवॉल्यूशन है, जो रॉकेट और अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक में हो रहे बदलावों तथा अंतरिक्ष तक बढ़ती पहुंच को रेखांकित करती है। अंतरिक्ष की ओर बढ़ता हर कदम मानवता के भविष्य की नई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं आरआरआर फिल्म का गीत। अमित त्रिवेदी की आवाज में, रिया मुखर्जी ने इसे लिखा है, एमएम क्रीम का संगीत।

कोई जान ही ना। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं लखविंदर वड़ाली और नीति मोहन के स्वरों में। मनोज मुंतशिर और श्याम दीवाना ने इसे लिखा है, रोचक कोहली और विक्रम नागी का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आपने ट्यून किया है विविध भारती। आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम सनक, आवाज श्रेया घोषाल की, रश्मि विराग की रचना है और जीत गांगुली का संगीत।

0: साथियों, क्या आपको पता है कपास का एक छोटा सा पौधा हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? शायद हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। खेतों में उगने वाला यही सफेद रेशा हमारे कपड़ों से लेकर कई जरूरी उत्पादों तक पहुंचता है और किसानों तथा लाखों लोगों की आजीविका का आधार बनता है। अब आप सोच रहे होंगे, आज अचानक इस कपास की बात क्यों? तो ऐसा है कि 7 अक्टूबर को कपास यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस इसी सफेद रेशे से जुड़े पूरे संसार को समझने का अवसर देता है, साथ ही ये कपास की खेती को अधिक टिकाऊ बनाने और किसानों के हितों पर ध्यान देने की भी जरूरत को याद दिलाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना? बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: तो इंस्टाग्राम पर विविध भारती के पेज को फॉलो किया या नहीं?

अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। रचना रश्मि विराग की और धुन बनाई है कौशिक गुड्डू आकाश ने।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, कार्यक्रम है चित्रलोक। साथियों, कुछ बातें कहने के लिए कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और कुछ एहसास सिर्फ संगीत कह देता है। तो ऐसे ही खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शिद्दत फिल्म का गीत अंकित तिवारी की आवाज में। कुंवर जुनेजा ने इसे लिखा है और गौरव दास गुप्ता का संगीत।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म का गीत सुनिए वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाजों में। इंद्रनील ने इसे लिखा है, सचिन जिगर का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं भूल भुलैया 3। इस फिल्म का गीत आदित्य रिखारी तुलसी कुमार की आवाजों में, आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लिजो सरिजो का।

आदित्य रिखारी और लीजो जॉर्ज डीजे चीट्स इनकी संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 3 से। इसी के साथ दीजिए चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवां बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

आज जबकि संगीत तकरीबन चोर में बदलता जा रहा है, गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मद्धम पड़ गई।

दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया। लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद से।

0: जो हम।
1: अख्तरी भाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थी। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाई तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगी और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान ली? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

तीस के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए।

सन 1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरीबाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गईं।

वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गई। उन दिनों में वो बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह ये है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी उन्होंने

बेगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थी जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थी और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जाने ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को यह गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रही।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती हैं।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मुसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मुसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान, यानी सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना।

बेगम अख्तर की आवाज का जादू अपने शबाब पर था। उन्होंने गजलों की दुनिया को रोशन कर रखा था, पर तभी 30 अक्टूबर 1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत जिसका नाम है उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि

0: जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताए। वहां से शुरुआत करते हैं।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूं, और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे हैं, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं। पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे। हाँ
0: अच्छा,
1: जी, तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए। तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे
0: जी।
1: को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से, और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
0: हाँ, 4 या 5 बजे
1: हाँ जी,
0: शायद।
1: हाँ जी, हाँ
0: हाँ
1: जी।
0: जी।
1: तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, हम बच्चे ही थे, और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया, और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: क्या बात है।
1: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसी की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के
0: जी।
1: फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के सुन सुन के। या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे,
0: जी।
1: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया। और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
0: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से विविध भारती मेरे जिंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं, मैं कई बार लोगों से शेयर किया
0: जी।
1: कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है, या फिर मैं जो चंदन हूं, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है, तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए, और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए,
0: जी
1: है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना। क्योंकि एक बाल्य मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना
0: क्या
1: चाहता
0: बात
1: हूं,
0: है।
1: है
0: ये
1: ना।
0: हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत
1: बिल्कुल,
0: धन्यवाद इसके लिए।
1: शुक्रिया
0: बचपन की जैसे बात की आपने,
1: जी।
0: तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए,
1: हाँ जी,
0: क्या
1: हाँ
0: वो
1: जी,
0: इस चीज
1: हाँ।
0: से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जिसे सही मायनों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप।
1: बिल्कुल, अरे वाह। एक तो जहां पे, मतलब क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हो 2:30-3 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था, और गाने चल रहे होते थे, मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी। तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूं कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, जो कि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे,
0: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा,
1: नहीं कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा, है ना, बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है। तो बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
0: अच्छा।
1: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा, तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊं मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विद्यार्थी ने हौसला

0: ला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और
0: कोई
1: सपनों की
0: और
1: नगरी में आना ही है
0: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे,
1: जी।
0: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट थे,
0: अरे बहुत
1: किस तरह
0: ज्यादा,
1: के आपने बचपन को जिया है जैसे,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: किस
0: जी
1: तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच, आप
0: बिल्कुल
1: ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
0: हाँ, मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह कि जहां मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है,
1: अच्छा।
0: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहां पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहां पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन,
1: अच्छा।
0: और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो लेकिन कई बार
1: कोई ना
0: मुझे
1: कोई
0: लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
1: जी,
0: और सब कुछ लिखा हुआ होता है,
1: बिल्कुल
0: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपने आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में अमूमन सभी घर में सभी माँ बाप चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी पर हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए, और मेरा तो बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी पांच भाई थे और उनमें से तीन भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई बीएसएफ में है, वहां एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बट
1: अच्छा
0: मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई, तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था।
1: हाँ।
0: कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलोसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास,
1: बिल्कुल,
0: मैं बेवजह खुश हो जाता हूं कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है जिसे
0: हाँ
1: हम बाहर तलाशते हैं।
0: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा मुझे काम मिलेगा,
1: बिल्कुल,
0: यही एटीट्यूड था मुझे, कभी भी
1: क्या बात
0: शक नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन
0: वाह,
1: सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: एक बहुत प्यारा गीत है, गाने का बोल है, जब हम जवां होंगे जाने कहां
1: क्या
0: होंगे।
1: बात है, क्या बात है, बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।
0: यस।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा, ऐसा नहीं।

0: कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
1: अच्छा
0: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी। तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे। लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस ले आओ।
1: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: उस
0: जी,
1: तरफ रुझान शुरू से था।
0: हाँ। और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, मुझे कोई और बुला रहा है, तुम तो मुझे क्यों इस तरफ लेकर के आ रहे हो,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था। मतलब किस तरह मैं पास हो गया,
1: अच्छा
0: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ,
1: ये
0: बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
1: आपने पटना से किया
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जी।
0: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
1: बिल्कुल
0: ये सब मुझे पता होगा। तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
1: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
0: हाँ
1: आ गया
0: जी,
1: था,
0: हाँ जी, हाँ
1: इसीलिए
0: जी, हाँ
1: वो
0: जी,
1: फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
1: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं सुनने
0: देखो,
1: वाले।
0: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
1: जी।
0: अरे

0: अच्छा, हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी,
0: है ना? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहाँ से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे हम बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया, और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूं, मैं भूल ना जाऊं। मेरे यहाँ ना वही, जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय, और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
0: बहुत कमाल।
1: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। बोले नहीं, फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था, और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम

0: था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ रही है कि भाई 1 2 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चूंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
1: अच्छा
0: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था, और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई और तब तक 12:30 हो चुके थे, और मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक से पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको, मेरे सारे दोस्तों भाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने, मुझे बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई, उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1 2 महीने के बाद फिर से क्योंकि टीचर के बिना मैं रह नहीं सकता था,
1: जी,
0: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
1: रच बस गया था सिनेमा।
0: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियां आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
1: जी
0: आज,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
0: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था तो मुझे ये था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, तो मैंने ना 1 से 12 15 सवाल तैयार करके रखा था, यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
1: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
0: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है, मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं, ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
1: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
1: ये
0: चादर।
1: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
0: बिल्कुल
1: नहीं सपने देखने से,
0: हाँ,
1: और जो चाहेंगे वो होगा,
0: हो जाएगा,
1: बस वो मेहनत की जरूरत है
0: एक ही
1: और
0: जिंदगी मिली है
1: शिद्दत।
0: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे, कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
1: जी,
0: है ना,
1: मन की
0: और
1: खुशी।
0: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार लोग लगते हैं कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा,
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीच का, जो होता है ना वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है, होता कुछ नहीं है वहां,
1: बिल्कुल।
0: लोगों को लगता है अरे सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल, नाम शोहरत पैसा, इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूं माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊं आपको, मैं इसके लिए मुंबई में हूं, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा, अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूं, एक कमाल की एनर्जी में होता हूं, ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है बात, एक्शन और कट के
0: बिल्कुल
1: बीच का
0: बिल्कुल,
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो वो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त, बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अभिनय भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूं और समझता हूं कि उस लम्हे को जी लूं, उस पल को जी लूं। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते, बट कोशिश होती है उसके आसपास भी चला जाऊं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहां पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है, ये दिल आशिकाना।

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूं तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज नहीं है, इसको खेलना है। नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक, कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो। मैं उसमें बाल्य कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मजा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे। और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे, गांधी गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था। हालांकि अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली कैरेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें, है ना, कैरेक्टर को कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना में मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए। साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले किया। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूंकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
0: बिल्कुल।
1: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊंगा। और
0: अच्छा
1: मैं उस 1 महीने में राग दरबार

0: एक प्ले था, श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीजें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय।
1: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
0: हाँ
1: है,
0: जी,
1: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल।
1: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े, और उसके
0: जी,
1: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
0: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता, क्योंकि आप चार भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: बिल्कुल।
0: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है, तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में। IMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि वहां जॉब मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहां पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था। और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा, क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे, है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी
0: हाँ
1: याद, वो जो पहला दिन था,
0: हाँ
1: उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूं, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद
0: तो
1: करते हैं आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम, जैसे होता है ना, कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, लगता है क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता, है ना,
1: जी
0: 50 चीजें सोचता। उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीजों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन, वहां उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूं, तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूं, प्रणाम कर लूं। तो
1: अच्छा।
0: मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा। फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूं, जो होगा अब आपके हवाले है, आ गया हूं तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल।
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूं तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके बाद से शुरू हो गया, रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन, 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपके लिए,
0: मजेदार तो
1: ये
0: बिल्कुल
1: जीवन,
0: था, बिल्कुल था।
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी
1: लेते।
0: भी नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में,
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, या मुंबई में हूं, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूं,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो
1: बिल्कुल।
0: अनुभव बहुत जरूरी था। तभी तो आज जब चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूं, उछलता नहीं हूं, क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था,
1: अच्छा,
0: क्योंकि वहां भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
1: जी,
0: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहां।
1: ओके।
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूं ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊं तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
1: जी
0: वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहां से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था, और
1: अच्छा
0: सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे। तो
1: बिल्कुल
0: मैं पैदल ही निकलता, कहीं पसीने से तरबतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था, और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात ये है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि
1: नहीं
0: ये चीजें मैंने देखा है, भोगा
1: जी
0: है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं,
1: जी
0: इसलिए ये सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
1: अच्छा
0: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था, उसमें
1: अच्छा
0: तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है, मैं रोज 12 से 15-20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए, तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया, उसमें
1: अच्छा
0: सोल वगैरह कुछ नहीं था, तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
1: अच्छा
0: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो,
1: अच्छा
0: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर 1-1.5-2 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आज यहां बैठा हूं ना, तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है
0: आशीर्वाद है। अगर वो
1: बिल्कुल।
0: लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए यहां सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: ओके,
1: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना, तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था, तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, मैं
1: बिल्कुल
0: सारे बचपन के सारे गाने लेकर के
1: बिल्कुल
0: ही,
1: सुनवाते हैं
0: हाँ
1: गीत।
0: जी।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं।

0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है ना, बोलो, बोलो। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
5: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
6: मेरा सारा साथ होगा।
7: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
8: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
7: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
8: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
7: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। यह है बेगम अख्तर की आवाज, शायर शकील बदायूनी, संगीत खैया।

बेगम अख्तर की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, और अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाज़ों में ये गीत। लेस्ली लेविस का लिखा हुआ गाना, संगीत लेस्ली लेविस और श्री जयदेव का, एल्बम का नाम आत्मा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एल्बम आपकी आशा।

अलीशाज लव नोट्स, ये एल्बम का नाम है। अलीशा चिनॉय की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम है, आवाज, गीत और संगीत जयवालिया का।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें साहिर होशियारपुरी के शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब आपको सुनवाते हैं वेणुगोपाल गोस्वामी की आवाज में ये पारंपरिक रचना, संगीत भी वेणुगोपाल का है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: रीटा गांगुली की आवाज, संगीत विश्व मोहन भट्ट का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति परवीन सुल्ताना और जगजीत कौर की आवाज़ें, माया गोविंद के बोल, खय्याम का संगीत, एल्बम रज

रूम रूम झूम झूम गाने ने को जाए झूम मदिन की लड़िया कारी कारी प्यारी प्यारी मस्तवारी रत नारी लागत कटारी न्यारी कजरारी अखियां राजे महाराजे सब साजे बाजे

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
0: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
0: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार।
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
0: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की ध्वनि अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
0: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
0: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।

0: इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
0: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है।
0: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गाँव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए। महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किनकी स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किनकी स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हर पल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी।

0: उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं। बस सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
0: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
0: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
4: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
1: बस बस, मैं समझ गई।
0: वो सोचने लगी,
1: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
0: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
1: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
5: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकटचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा काम।
2: साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
3: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।

0: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
1: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
2: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होते हैं, ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
0: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
2: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
0: क्यों?
2: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
0: हो।
2: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
1: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
2: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
1: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
2: थैंक यू।
3: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और शक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
4: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
0: सो फनी सर।
5: टाइम पर आ गए, अब हम सही टाइम पर पहुंच जाएं।
3: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
6: किसने खींची चेन?
0: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
2: जी सर, मैंने ही चेन खींची है सर। मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
6: व्हाट? क्या मजाक है ये, आप कैसे कह सकते हैं?
2: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
6: आइए आइए, देखते हैं।
2: आइए, हम भी चलते हैं।
6: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
2: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
3: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
2: आइए सर, आइए देख लीजिए।
6: अभी तक तो यहाँ भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
2: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
6: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
0: वी आर सो थैंकफुल टू यू, इट्स अमेजिंग।

0: May I know your name, please?
1: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiah.
0: Oh, the engineer-in-chief of Mysore State.
2: Our railway sachiv bhi.
3: Namaskar, sir.
4: Ji.
1: Ji, ji, sir. Main wahi hoon.
0: Namaskar, sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
1: Dhanyavaad.
4: To, aise the Dr. Vishweshwaraiah. बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
5: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
4: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
5: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
4: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
7: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। पर मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।
8: सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
9: तो श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
6: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु चेतना
9: कुसुमलता
6: वीरेंद्र
9: और हमारी आज की विशेषज्ञ
6: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
10: उमंग।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: येसुदास और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए योगेश का लिखा हुआ गाना। बप्पी लाहिरी का संगीत, फिल्म का नाम है अपने पराए।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए दो प्रेमी, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: छनकी के ना
2: छनकी छनकी
1: बिजू

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम हम 5।

लीजिए अब सुनिए हरजाई फिल्म का गाना। आवाज किशोर कुमार की है, विट्ठल भाई पटेल ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बंदिश फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है, जो टेक्स्ट है, जो हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ भी लिया है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा दी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनके लिए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। आज आपको कुछ सुनाना है, प्यार की दास्तान भी, दिल का हाल भी, पायलों के गीत भी और कहानियां भी। बाबू आना, तुम भी सुनते जाना, बाराती भी सुनो और बंधु मितवा तुम भी सुनो। सुनाना तो ये है कि ए मेरे दोस्त, तेरी यारी हमें जान से प्यारी है। इन गुलाबी कलियों ने भी हमारा रास्ता रोक कर यही कहा, यार हमारी बात सुनो। पर बात तो यही है कि अब कौन किसकी सुनता है। सुनना किसी को पसंद नहीं। कोई कहता है मैं क्यों किसी की सुनूं, पर सच तो ये है कि सुनना भी एक कौशल है। सुनना इसलिए है ताकि हम बोलने की तैयारी कर सके। जी हाँ, सुनना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या आवश्यकता है, बस यही है हमारा आज का विषय। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज आपकी इस इबारत में जीवन का पूरा रंगमंच सिमटा है। जहाँ प्यार की दास्तान है, दिल का हाल है, पायलों की गीत है और यारी की वो मिठास है जो जान से भी प्यारी लगती है, पर इन सब के बीच सबसे गहरी बात यही है कि आज सुनना ही सबसे ज़्यादा कठिन हो गया है। हर दिल कुछ न कुछ सुनाना चाहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमने सुनने को केवल बोलने से पहले का एक ठहराव समझ लिया है। जबकि सच तो यह है कि सुनना एक साधना है, एक कौशल है, एक प्रेम है। जब हम सच में सुनते हैं तो सामने वाले के शब्द ही नहीं, उसके मौन को भी सुन लेते हैं और तभी यारी, प्यार और कहानियां सार्थक होती है। इसलिए बोलने की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के अस्तित्व को सम्मान देने के लिए सुनने की कला को सीखना ही आज के शोर भरे समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि सुनने की इच्छा हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, पर जब कोई सुनना ही नहीं चाहे तो हज़ार शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। सबसे पहला जो गीत है वो फरार फिल्म का गाना है, प्यार की दास्तान। ये गीत है लता जी की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

क्या करेगा सुन के जमाना, तुम सुनो तो कहे जहां। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी खास व्यक्ति के लिए होती है, किसी खास व्यक्ति को सुनाने के लिए होती है, और जब वो व्यक्ति उन बातों को सुनता है तो दिल को सुकून मिलता है। एक हमारे साथी की ये बात कि फरार फिल्म का ये सदाबहार गीत, लता मंगेशकर की मखमली आवाज़, हेमंत कुमार के शांत संगीत और कैफी आज़मी की बेहतरीन शायरी का एक अनूठा संगम है। ये गाना प्रेम के निजी और पवित्र एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता हुआ गीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि किसी की सुनना सम्मान बोधक सूचक है। सुनना ही बोलने वाले को सम्मान देना होता है। सुनना एक कला है जो सहनशीलता और संवेदनशीलता का परिचायक है। खासकर अगर बातें दिलों की हो तो सावधानी सर्वोपरि रखनी चाहिए। बोलने वाले के संवाद चाहे व्यंग्यात्मक हो, कटाक्षपूर्ण हो, अनर्गल हो, असंवैधानिक हो, विरोधाभास हो या चुभने वाली हो, सुनकर ही अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद आपका। चलिए हम अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। श्री 420 फिल्म का ये गाना है, मन्ना डे की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

अब एक सीधी सी बात हमारे मन में ये है कि अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या क्या नुकसान है, ये हमारा सवाल भी है आपसे। अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना ही आगे जाने का मार्ग है, आगे जाके सुना हुआ ही हम बोल सकते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अपनी बात कहना है, लेकिन सुनना किसी के दिल को जगह देना है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहाँ बोलने से पहले कोई सुनने वाला और चुप्पी में भी समझने वाला हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुन लेना नहीं है, बल्कि किसी के दिल तक पहुंच जाना है। कभी कभी इंसान की सलाह नहीं, बस एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहां उसकी बातें बिना किसी शिकायत के सुनी जाए। सच तो यह है कि जब कोई हमें दिल से सुनता है तो आधा दर्द वहीं खामोशी में पिघल जाता है, कुछ जख्म दवा से नहीं सुन लिए जाने से भर जाते हैं। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज कहने सुनने की बात है तो कुछ लोग कहते रहते हैं, जरूरी हो या ना हो उन्हें सुनने की आदत नहीं है, कहने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है ताकि कुछ उपयोगी या ज्ञान की बातें मिले। दूसरों से बात करते समय सोच समझ कर बोले, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे दूसरों को बुरा लगे, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद। अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, ये गाना लता जी की आवाज में है।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये ससुराल फिल्म का गाना है। बहुत कम श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया है सही लिखा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिर्फ अपनी ही बात लगातार बोलना और किसी दूसरे को नहीं सुनना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे को सुनना भी और समझना एक बेहतरीन संवाद की नींव होती है। बोलना और सुनना संवाद के दो अहम पहलू है, क्योंकि सिर्फ अपने ही लगातार बोलने से बातचीत अधूरी रह जाती है और एक अच्छा श्रोता बनने से बातचीत अधिक प्रभावशाली और संतुलित होती है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी सीखना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल अपनी दास्तान सुनाने को बेताब रहता है, पर दिमाग हमेशा ये सोचता है कि क्या जो सोचकर हम बयान करेंगे उसे उसी तरह सामने वाला समझ सकता है, कहीं वो कुछ और समझ लिया तो हमारे मन की बातें कहने का अर्थ नहीं रह जाता है। यही दुविधा हमेशा ही दिल और दिमाग के बीच चलती रहती है। कहते हैं कि कह देने से मन का बोझ कम हो जाता है, पर कभी कभी खामोशी भी मन की पीड़ा को कम कर देती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये तीन कलाकारों पर फिल्माया गया गाना है। कौन से कलाकार हैं ये आप बताइए। और हाँ, हमारा जो सवाल था कि अधिक सुनने के क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।

कुछ इसी तरह की कहानियां हमने भी अपनी दादी नानी और अपने पुरखों से सुनी और उन कहानियों को सुनने में बड़ा आनंद आता था और आनंद के साथ साथ हमें कई बातों की सीख भी तो मिलती थी ना, इसीलिए तो वो कहानियां बनाई और सुनाई जाती थी। एक साथी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उनकी ये बातें हमारे दिल को छू गई। लिखा है कि सुनना यानी श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है बल्कि ज्ञानार्जन और आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। हमारे देश में अनादिकाल से श्रुति परंपरा रही है। गुरु द्वारा कहे जाने वाले वेदों और उपनिषदों के मंत्रों और ऋचाओं को सुनकर अपने उनके गूढ़ अर्थ समझकर चेतना में आत्मसात किया जाता था और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ उस मंत्र में छुपे गूढ़ अर्थ और भावना से तादात्म्य स्थापित होता था। गुरु के द्वारा कहे जाने वाले मंत्रों के भाषा प्रवाह आरोह अवरोह और अभिव्यक्ति के सूक्ष्म भेदों को बहुत गहराई से आत्मसात किया जाता था, जिससे सुनने वाले को वाक सिद्धि यानी प्रभावशाली रूप से अपनी बात कहने की कला में निखार आ जाता है। बहुत सुंदर बात आपकी। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना और सुनना ही व्यक्तित्व का परिचायक है। संक्षिप्तता में पूर्णता प्रकाशित करती वाणी कहनी चाहिए। भाषा में शालीनता परिपक्वता परमावश्यक है। एक साथी लिख रहे हैं कि अधिक बोलने से शब्दों का महत्व कम हो जाता है और अनजाने में दूरी बढ़ जाती है, पर ज्यादा सुनने से हम बेहतर श्रोता बनते हैं और दूसरे को समझने के साथ उसके मन की बात भी जान पाते हैं, इसलिए अधिक सुनना समझदार होने की निशानी है। और एक साथी ने तो ये बात लिखी है कि मैंने तो एक कप चाय बना ली है और सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए अब बाबू आना सुनते जाना, ये गाना संगीत किसका है आप बताइए।

0: सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
1: बाबू आना, सुनते जाना।
0: धत धत।

0: लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे जा जा,
0: तू जा जा, अरे जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा जा।

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।

झुमरू फिल्म का गाना, इसमें संगीत किशोर कुमार का। एक साथी की बात, पहले हर परिवार में रिश्तेदारी में कहानी सुनाने वाले हुआ करते थे, जो बड़े तन्मय होकर कहानी सुनाते थे, और कहानी अगर एक दिन में खत्म ना हो तो फिर दूसरे दिन शुरू होती थी, और हम सभी भी सुनते थे, क्योंकि कहते हैं कि अधूरी कहानी सुनने पर रास्ता भटकने का डर रहता है, इसलिए पूरी कहानी सुनना जरूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। एक अच्छा वक्ता होने के साथ आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये हुनर न केवल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, बल्कि समाज में संवादहीनता की खाई को भी पाटता है। केवल सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं, लहजे और अनकही बातों, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुनना एक हुनर या कला कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन का संगीत, दो कलाकार कौन है आप बताइए।

देव आनंद और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रही हैं कि सुनना जहां एक बड़ी कला है, वहीं समय पर सटीक उत्तर देना भी उतना ही जरूरी है, वरना लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी या सहमति समझ लेते हैं। सुनने और जवाब देने का संतुलन, पहले सामने वाले की बात को पूरे धैर्य और ध्यान से सुने ताकि आप उसके संदर्भ को पूरी तरह समझ सके। जब बात पूरी हो जाए तो अपनी बात को स्पष्ट और संयम के साथ रखें ताकि गलतफहमी ना फैले। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि सुनना सुनाना जीवन के दो अनमोल पहलू है जो हमारे दिलों को आपस में जोड़ने वाला नाजुक रेशम धागा है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तब दूसरों के अस्तित्व को, उनके जज्बात को, एहसासों को अपनाते हैं, निःशब्द मान्यता देते हैं तो दूसरी ओर सुनना यानी खुद की भावनाएं, अनुभव और सपनों को आवाज का लहजा देकर दूसरों तक पहुंचा देना, दिल में उतार देना ही जिससे मन हल्का हो जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि जब मैं घर पर ही हूं और धर्म पत्नी कहे कि सुनिए जी, तो एक बार में न सुनने की एक्टिंग करता हूं, फिर कहती है सुनिए जी, ये सुनकर मैं आनंदित होकर प्यार से कहता हूं कहिए जी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक चुप। और ये आगे लिख रहे हैं कि आगे क्या है मैं भूल गई हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना है, न बोलने की ना चुप रहने की। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, सुजाता फिल्म का गाना, एस डी बर्मन की आवाज़।

कम बोलना कमजोरी नहीं, एक खूबसूरत समझदारी है। जब शब्द कम होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सुनना अमूल्य वरदान है, भगवान की तरफ से सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, सुनाना ये ज़रूरी नहीं है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि बिना सोचे बहुत ज़्यादा बोलने पर वह बगुले वाली हालत हो जाएगी, मुंह से आया हुआ आहार ज़मीन पर गिर जाएगा। बगुला आसमान में चोंच में मछली पकड़ कर ले जा रहा था, किसी ने देखा और चिल्ला कर कहा, अरे बगुला सांप पकड़ा है कि मछली? बगुला सिर्फ सांप सुना, फटाक से बोलने के लिए मुंह खोला और मछली जमीन पर गिर गई। ये कहानी भी है और एक इसमें संदेश भी छुपा है। एक हमारे साथी की बात यह है कि कम कुछ सुनो और सुनाओ। मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो एक अच्छे श्रोता भी बनिए, ये नहीं बस अपनी ढपली और अपना राग। तो ये बात इन्होंने लिखी, धन्यवाद। और अगला गाना सुहाग फिल्म का ये गाना है। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया है। शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सच कहें तो रेडियो से हमें सुनने का संस्कार मिलता है। हम 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकते, मगर सुन जरूर सकते हैं। शायद इसलिए कुदरत ने हमें दो कान और एक जिह्वा प्रदान की है। सुनना भी वास्तव में एक कला ही है। प्रकृति के नजदीक खामोशी से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाजें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर के गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलिया की स्वर लहरियां, किसी गौरी की चूड़ियों की खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम, कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूं और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूंगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी, लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है। सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मन स्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वह केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद जरूरी है। चलिए अगला गीत अब सुनते हैं, रोटी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के दौर में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडंबना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज हो गई है। एक सच जो इंसान नहीं जानता, जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अंतिम गाना, और आपने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आज की त्रिवेणी का शीर्षक है माफी। श्रोताओं नमस्कार। जिंदगी में हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। गलती इंसान से हो जाना स्वाभाविक है। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो कभी कोई और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। ऐसे में मन में शिकायत, गुस्सा और नाराजगी जमा होने लगती है। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है तो जरूर उसे माफ करने का साहस दिखाना चाहिए ताकि दिल पर कोई बोझ ना रह जाए। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसे क्षमा कर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। माफ कर देने का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं बल्कि अपने मन को क्रोध, द्वेष और बोझ से मुक्त करना है।

जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो सबसे अधिक शांति हमें ही मिलती है। मन हल्का रहता है, रिश्तों में अपनापन बना रहता है और जीवन सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए जहां भी संभव हो क्षमा को अपनाइए। दिल में किसी के लिए कटुता कभी ना रखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को मुक्त

क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, मन को सुकून देती है। इसीलिए क्षमा को अपनी ताकत बनाएं, प्रेम और सद्भाव के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें। जब दिल हल्का होता है तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और जीवन अधिक सुखद बन जाता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प हम सब भी लें, जहां संभव हो माफ करें, मुस्कुराएं और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो हम भी आज एक छोटा सा संकल्प लेंगे, नफरत नहीं प्रेम बांटेंगे, शिकायत नहीं समझदारी अपनाएंगे और जहां संभव होगा दिल से माफ करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों की रोशनी बिखेरते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में

0: भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
4: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
3: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
5: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
6: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
5: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
7: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
5: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये आज और कल, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत सी रामचंद्र का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: बीन का जादू, ये फिल्म का नाम है। सुमन कल्याणपुर की आवाज, बी डी मिश्रा का लिखा हुआ गाना, संगीत एस एन त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, फिल्म का नाम भरोसा। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो कैसी हैं मंदाकिनी जी?
2: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले भी खुश होंगे और अभी जो ये माहौल चल रहा है उत्सव का, तैयारियों का, इसमें लगे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल लगे होंगे। और देखिए, उत्सव तो हर बात में है। अभी हमारे देश की जो चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है उसका भी पूरा देश जो है उत्सव मना रहा है ना। देखिए, चार बेटियां 400 मीटर की चार चार जिम्मेदारियों को लेकर, एक तिरंगे का सपना था उनका,
1: क्या बात।
2: और यही थी भारत की महिला जिन्होंने 4x400 मीटर रिले टीम की जो कहानी हमारे देश को दी है, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं। किरण जी हैं वो, किरण पहल ने दौड़ की शुरुआत की और उसके बाद एमआर पुवम्मा, फिर प्राची चौधरी और आखिर चरण में विथ्या रामराज ने मोर्चा संभाला। और चंचल, शुरुआत में भारत तीसरे स्थान पर था लेकिन पुवम्मा ने रफ्तार बढ़ाकर टीम को आगे पहुंचाया और प्राची ने उसकी बढ़त को कायम रखा। और आखिरी 400 मीटर में विथ्या पर सबसे बड़ा दबाव था और बहरीन की धाविका लगातार करीब आ रही थी, लेकिन विथ्या ने आखिरी पलों में हिम्मत नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर इन चार बेटियों ने 3:29.69 में पूरा किया अपना राउंड और स्वर्ण पदक जीत लिया।
1: तो हम भी बधाई देते हैं इन चारों बेटियों को और देश की सभी बेटियों को जो इतनी लंबी दौड़ लगाने का, ऊंची छलांग लगाने का, पंख फैलाकर उड़ने का सपना देख रही हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है चंचल कि इन चारों की कहानियां अलग है, संघर्ष बिल्कुल अलग है ना, लेकिन मंजिल एक थी, क्या, कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। और ये जो जीत है हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, युवती के लिए, स्त्री के लिए एक संदेश है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर कदम रुकते नहीं है, हौसला बनाए रखती हैं बेटियां, तो मंजिल की रफ्तार बिल्कुल आप पा सकती हैं।
1: और इसमें सबसे बड़े साथ की जरूरत होती है परिवार के, तो बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसले को कभी भी गिरने मत दीजिए। और बता देते हैं कि आज किस विषय पर सखी सहेली में बात होगी, तो महत्वाकांक्षा की बात होगी। और जब महत्वाकांक्षी होती हैं बेटियां या कोई भी, तो उनका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, इस बारे में बात होगी। और आज साड़ियों का दिन है, यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी। और फिर हम, हमारे जो श्रोता हैं, किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
2: क्या बात है,
1: शब्द हमारा और विचार आपके।
2: बिल्कुल। तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति ये है, हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए, पेड़ लगाए कि नहीं, अपने घरों के आसपास आपने प्रकृति को स्थान दिया कि नहीं।
1: और प्रकृति का अर्थ हर जगह जाकर थोड़ा सा बदल जाता है। हम कहते हैं ना कि भाई आग की प्रकृति है जलाना, तो यहाँ भी प्रकृति का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि तीन तरह की प्रकृति के शरीर होते हैं, वात प्रकृति, पित्र प्रकृति और कफ प्रकृति। तो प्रकृति का जो शब्द है वो वहीं कहीं कहीं उसका अर्थ भी बदलता है।
2: आप इसको बड़े डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता किस अर्थ में प्रकृति को लेकर अपने विचार लिखेंगे उसका हमें इंतजार रहेगा।
1: बिल्कुल। इसके अलावा विश्व कपास दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गुड़ की मिठाई, यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान उनका होता है, वो गुड़ की मिठाइयां किस तरह बनाते हैं, खाते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन मिठाई की बात और मीठा सा गीत ना हो
2: बिल्कुल ही गीत होना चाहिए।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना, और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल, महत्वाकांक्षा या आवेग दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं, बस दोनों में फर्क इतना ही

0: है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है, और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है, और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती है।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है।
0: बिल्कुल
1: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पे खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
0: आता
1: आता।
0: नहीं है, क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल,
1: जी
0: उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते,
1: जी
0: केवल ख्वाबों की दुनिया में बैठे होते हैं।
1: हाँ
0: इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो हमें थकाती हैं, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं, और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे
1: बिल्कुल।
0: देना।
1: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर ईएमआई की सुविधाओं पर चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे
0: दे
1: देना अपने
0: देना।
1: नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना, तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा, नुकसान
0: बिल्कुल
1: देगा।
0: देगा, और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी आपके इस व्यवहार से भी।
1: जी
0: ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल, कि महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़ें।
1: जी
0: सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है। एक सूत्र याद रखें हम, कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर
1: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक
0: है।
1: जाइए, अपनी गति को धीमा कर दीजिए।
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल
1: महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल
1: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है, क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है, अगर तीन चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य।
0: बिल्कुल। और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा छोटा कर लें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। 5 साल का लक्ष्य सीधे न देकर उसे 6 महीने के टुकड़ों में तोड़कर
1: जी,
0: आप तैयारी कर सकते हैं, है ना।
1: और कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, जैसे नौकरी छोड़ना है, कोई बड़ा निवेश करना है, किसी को गुस्से में जवाब देना, इन सब के लिए अपने आप को हमेशा 2 से 3 दिन का समय दे देना चाहिए कि चलिए थोड़ा रुक जाए, फिर ये काम करेंगे। अगर नौकरी छोड़ने का झट से मन में विचार आया तो
0: हाँ
1: नहीं, कुछ रुक जाते हैं,
0: हाँ
1: आज ही नहीं छोड़नी है।
0: हाँ
1: कोई बहुत बड़ा निवेश करने का सोचा तब भी थोड़ा रुक जाइए। तो जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं ना, तो वहां बहुत जल्दी अप डाउन आ जाते
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: तो कोई भी बड़ा निर्णय है थोड़ा सा रोक लें अपने आप को, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि 90% आवेग जो है वो 72 घंटे में
0: मर
1: मर जाता
0: जाता
1: है।
0: है।
1: इसी तरह से कोई बड़ा नुकसान अगर हमारा होने वाला है तो उससे भी हम बचे जाते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही, शेयर बाजार की तरह जो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है ना,
1: जी
0: उस तरह से हमारे विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं।
1: हाँ
0: लेकिन अगर आपका फैसला जो है दृढ़ है तो वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, अटल
1: हाँ
0: होगा वो इरादा। तो भविष्य बनाने वाले काम का 80% समय बोरिंग होता है, रोज वही अभ्यास है, वही बचत है, वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और हर इंसान सोचता है कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना, और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं, तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है, क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे, ये
0: ये
1: तीनों
0: तीनों
1: चीजें।
0: चीजें आती है। बिल्कुल बहुत
1: हाँ
0: अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था,
1: क्या
0: जो
1: कहा,
0: हमारे कितने बड़े आइडियल हैं आज
1: हाँ
0: भी
1: हम
0: हम उन
1: सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के स्रोत हैं।
0: बिल्कुल उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने दें।
1: क्या बात है,
0: मतलब सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहें तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टेयरिंग छीन लेता है, और अनुशासन जो है वो हमें
0: मंजिल
1: मंजिल तक
0: तक पहुंचा
1: पहुंचाता
0: देता
1: है।
0: है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
1: और देखिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा है वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है, सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें

0: मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल, हाँ, कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
0: और भी आगे संदेश हैं?
1: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।
2: वो है कि मर कर भी तुमको जुदा

0: हाँ, तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी, और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियां हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
1: हाँ, और कई सखियां ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में, भैया इसका नाम जो है उन्होंने
0: पहली
1: पहली
0: बार
1: बार सुना
0: सुना
1: है।
0: है।
1: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है, और ये साड़ी

0: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गांव की एक कला है और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है कोई बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रेजिस्ट प्रिंट की एक तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी सूट दुपट्टा बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीजों से ये साड़ी बनती है और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
0: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी।
1: क्या?
0: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपने सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती है, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
0: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है और इसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, तो सोडे से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना तभी कपड़ा जो है वो पक्का
1: पक्का होता है। यानी ये वो हीना की तरह हो गई कि पिसकर ही हीना जो है
0: रंग लाती है
1: ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से चार मुख्य बूटे होते हैं और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी, अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था, और जलम यानी बूटा का मतलब है समृद्धि का प्रतीक। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टिस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन रहे हैं।
0: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है ताकि वो गंदा कम दिखे।
1: अच्छा।
0: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो वो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती। कुछ पारंपरिक मान्यता है।
1: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा। यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उम्मेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
0: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए सरकार अभी से GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती हैं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
0: तो हम एक गीत सुन लें।
1: हाँ?

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
1: बिल्कुल, तो चंचल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इन दिनों हम मना रहे हैं, विश्व कपास दिवस, और इसकी बड़ी महत्ता है। हम सभी जानते हैं कि ये दिन जो है आज के दिन खास मनाया जाता है, और कपास को सफेद सोने के नाम से भी हम जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है।
0: सही कहा मंदाकिनी जी।

0: और इस दिन का आयोजन, इसकी जो पहल की गई थी वो 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में हुई, जब व्यापार विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में पहली बार कपास दिवस मनाया गया था। और इसे शुरू करने की मांग अफ्रीका के 4 सबसे कम विकसित कपास उत्पादक देशों ने की थी। ये 4 देश हैं, बेनिन, बुर्किनो फासो, चाड और माली। और इन देशों ने कॉटन फोर को, इन देशों को कॉटन फोर भी कहा जाता है। आगे चलकर बाद में कोट डी या आईवोर भी इसमें शामिल हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और एक प्रस्ताव पारित करके 7 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस बात के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी रोटी भी कमाते हैं और बहुत सारे कहते ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।
1: वही तो अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
0: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने, उसकी प्रोसेसिंग में 40% से ज्यादा काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले इसी पर होता है।
1: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता का भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है ना, वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें। और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थायी थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल इसे एक उप शीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड, बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार परिवर्तन साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
1: करना। बिल्कुल,
0: तो चलिए अभी गीत सुन ले।
1: जी,

0: बहुत ही सुंदर गीत तुमने सुनवाया है चंचल, और हमारी सखियां और सखा इस गीत का आनंद भी ले रहे होंगे जैसे कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: हाँ और प्रकृति जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत गहरा शब्द है जो प्र और क्र इनसे मिलकर, जो इसके मूल शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, और इसके कई मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। प्रकृति का सामान्य अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी जो समझते हैं वो नेचर या प्रकृति कुदरत से ज्यादा समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति मतलब वो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़ पहाड़ नदी जानवर मौसम पर्यावरण ये सब चीजें, या हम कहते हैं ना अपनी प्रकृति के बारे में कि हम अगर किसी
0: प्रकृति ये है
1: तो वो भी हमने नहीं बनाई है। प्रकृति का मतलब ही ये है जो
0: कुदरत ने बनाया है। जी, तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान पेड़ पौधे जीव जंतु नदियां पर्वत समुद्र वायु मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर हर जीव को इनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
1: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता हैं वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्मांड, और इसमें पेड़ पौधे नदियां पहाड़ जीव जंतु पर्यावरण शामिल है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है, मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के पांच बुनियादी तत्वों क्षिति यानी मिट्टी जल पावक अग्नि गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, और उसके बाद साधु को उसी को
0: पानी से बचाना,
1: ये साधु की प्रकृति।
0: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे नदियां पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए पानी और जीने के लिए भोजन भी देती है।
1: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत नरम शांत है ना, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। प्रकृति, एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूं मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर पेड़ पौधे पर्वत नदियां खुले आसमान का नाम नहीं, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए पानी और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
0: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हांकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलांच कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियां और सिर पर धानी चुनरियां उड़ी हो, गली से जब वो जाती है नैनाभिराम लगती है।
1: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
0: वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं, नियमित देखभाल कर

0: करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
1: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
0: बिल्कुल,
1: और अब हमारे हाथों में है कि हमें
0: एक
1: गीत
0: गीत सुनवा दें।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई में।
1: हाँ भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हो, वो भी ऐसा मीठा जो हमारे सेहत के लिए नुकसान भी ना पहुंचाए, वो थी गुड़ की मिठाई।
0: बिल्कुल वही तो हमने कहा कि गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या ताड़ या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके बनाया जाता है ना। तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: तो चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि सेहतमंद जो चीज है गुड़, उसे ही बनाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा, और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है तो। इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है।
0: इसके पानी से आटा को गूंदना है, गुड़ के आटे से नहीं गूंदना है।
1: गुड़ का जो पानी हुआ है ना, जो गाड़ी गाड़ी चाशनी आपने
0: बनाई, लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
1: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई, इसे आपने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गरम गरम घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्कर पारे तैयार
0: हो जाएंगे। वाह क्या बात है, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए, गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलिये को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहें तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है, और पुराने समय में गांवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती थी।
1: सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती
0: मीठा
1: है।
0: मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी। बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है।
1: और जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू, जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल, पूरी, गुड़ की खीर जरूर बनती है, और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है, फिर इलायची, नारियल और किशमिश मिला देने, या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं, क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं।
1: हाँ।
0: अरे मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद हो गया जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ मिलाकर, और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर उसको उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें, पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेके, और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
1: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है ना?
1: जी, तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पारे, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी शायद लिख रहे हैं कि पंजाबियों में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए, और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है ना?
1: इसी तरह से जब भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
0: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरे मन की बात कह दी, मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे, तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है।
1: जी, और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान सी विधि भी इन्होंने लिख कर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय, आप दोनों दीदियों के लिए।
0: क्या बात है।
1: 1 कप पानी, 2 कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ, खौलाया हुआ ये दूध है। चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए। आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चाहिए गुड़ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा ही उन्होंने आगे लिखकर बताया है। और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए, छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का
0: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये 2 कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है।
1: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला
0: लूंगी। चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अगर ये लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं, भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है,
0: क्योंकि गुड़ ही गुड़ है।
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वहीं एक श्रोता लिख रही है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओ नमस्कार, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
4: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरबिंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिसमें श्री नीमकरवी बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
3: जी।
4: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते ही रह जाता है, तो ये भी एक चीज़ थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहाँ से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा। तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीमकरोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
3: तो नीमकरोली बाबा को एक भक्तिभाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार ना करते हो, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
4: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है, क्योंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
3: जी।
4: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 years और 20 years कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है। और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 इयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, तो इसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं।

0: के मन में ये बदलाव आया?
1: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और मैंने पढ़ाई भी वहीं से की है। जालौन जिले में एक छोटी सी जगह है कोंच, वहाँ पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद 1 साल ग्वालियर था, वहाँ से लखनऊ आ गए। और लखनऊ में जो एक, जैसे बोलते हैं, वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो अपनी अपनी तहजीब है
0: जी,
1: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया। तो पहले तो भाषा सुधरी वहाँ जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है। तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूज़िक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छन्नूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना, वो गली का ही पार्ट थे। तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में, गायकी में।
0: अच्छा।
1: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया। एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था, वो सडनली स्फुटित हो गया। और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था। तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से, वहां की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था। तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था। और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया, या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है, अमरनाथ बलि नाम का एक वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहाँ पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था
0: जी।
1: तो वो एक रूटीन बन गया। और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊँ
0: जी,
1: तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें। तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था,
0: जी,
1: तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है पर, और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज
0: भी ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचरिक
1: जी, और शहर से बाहर भी है। तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था, तो शहर जाने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस। बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 एकड़ की जो कॉलेज कैंपस था, वो वही दुनिया थी हमारी
0: जी।
1: तो उसके अंदर की जो सो, खैर, कहने का मतलब ये है कि MBBS किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परस्यूट्स थी उनको फॉलो भी किया वहाँ पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता ये कि आप किसी चीज़ के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था
0: जी जी।
1: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज एन द वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है, ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
0: जी।
1: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहाँ से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहाँ से शुरू हुई जी।
0: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनना
1: वही आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं। हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ
0: जी जी।
1: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूँ। मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे
0: जी जी।
1: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब लिटरली उनकी वो जो CD थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
0: क्या बात है।
1: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूं। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले 1 साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूं अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो, मैं अपने लिए गाता हूं, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को, बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई से के इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू Specifically ask me any of the song. I love all the songs. I can sing any one of it. I won't mind.
0: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
1: चलिए, तो मैं पहले हृदय में जिनकी सीताराम ही गा देता
0: हूँ। जी, एक लाइन सुना दीजिए।
1: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
0: जी।

0: जा रहे थे। तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह हैं, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था। और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है, वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं। पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयू, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले, फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए। तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा। तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
1: जी जी जी।
0: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है,
1: ओके,
0: तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है। तो क्या, तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चले गए। और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई, तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
1: अभी सुनाइए
0: हनुमान चालीसा चैट, एज़ इन
1: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है, तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहां पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
0: जी, जी।
1: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
0: नहीं
1: तो
0: हनुमान चालीसा तो मैं गा दूंगा, पर मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइंस। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री नीपकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहने, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
1: ईस्ट
0: को ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन। अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुम्हारे पासा, सो यू हैव दी द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी लाइन है तुम्हारे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसम सुर, हृदय भसम सुरभूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसे

0: अपार्ट फ्रॉम दैट, अष्ट सिद्धियां हमने देखा था, आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं. और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें, जो सिद्धियां जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं. क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है, अष्ट दिन दाता असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता
1: जी.
0: तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं. ऐसा ही एक एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रोज जसगावे अस्क श्रीपति कंठ लगावे. जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रोज जसगावे. इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
1: जी,
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं. तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे, आपको वहां पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में, वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000-5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट इज पॉपुलर. कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति, जो पिछले राष्ट्रपति थे, वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे, बराक ओबामा.
1: बिल्कुल.
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, डर से निजात पाने के लिए. हम सब भी वो करते, डर लगता था,
0: डर लगता तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते,
1: हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. अंधेरे कमरे में पार करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना
0: है. वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप. लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है.
1: जी जी.
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना. और आपको जिस भी आप देवता, जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके, उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना. मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे. जी
1: बिल्कुल, सकारात्मक भाव पैदा होता है. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते
0: हैं? मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ.
1: जी जी प्लीज सुनाइए.
0: जी जी. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. जय सिया राम जय सिया राम.

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे, बट
1: गाने की बात चलिए, हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन की गलियारों में। वहां आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे, या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के, फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर
0: इंजीनियर आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूज डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली वैसे मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता, तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहां पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी टिशु की, एक और टिशु के बाद अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी, फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते हैं कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह टाक जी वहां पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन। तो 4-5 साल वहां पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो practicing and working on it, and I do it primarily for myself. तो मतलब वो completely मेरे उसको commercialize करता नहीं हूँ, music को कुछ भी commercialize नहीं करता. So it's a very soul satisfying sort of an event for me every day. लेकिन neck for music, finding great music, recognizing great talent, musical talent is probably one art I developed over the period of मतलब multiple years, decades I'll say. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: वो
0: था, तो बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना फोन नंबर भी।
0: हाँ जी तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रोबब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, इफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे, मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ, जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री, के लिप सिंक नहीं करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का, 3rd week ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं। अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 वीक तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी, फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू हुए 4th week से,
1: और गाने बजने,
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया।
1: हाँ। और रील बनने लगे,
0: रील बनने लगे, हजारों की संख्या मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया, जो मिलता उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है।
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दें श्रोताओं को।
0: जी मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ। जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि ही सप्तऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ। शंभो शिव शंभो।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडेंट
2: थे और
1: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली क्या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज हैं उनके भी म्यूजिकल तेज। तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़
2: तो ये अभी की फिल्म्स हैं, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म्स बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माय गॉड क्या क्या एल्बम्स उन्होंने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, एक शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लिख।
1: अच्छा।
2: फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ, और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतना ही उनके लिए हृदय में उतना ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी,
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
2: जी।
1: तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
2: हाँ, तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली हाँ। मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है। तो बुंदेली मुझे चूके, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
2: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था। तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
2: वो है। और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते हुए किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा, मैं काफी दिन फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो। मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो। फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे। तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ उसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पे कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें
1: जी जी,
2: सागर में नैया डार दे, कौन उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद आई,
2: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दई। सो बेसिकली इट्स अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डाल देगा और हनुमत कौन है खेवनहार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवनहार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां बैठन हारी
1: जी।
2: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवनहार कौन है, हनुमत खेवनहार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे, आप ही खेवनहार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंपलीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स से भी पता नहीं हुई, देखेंगे तो सकता मिलियन हो गई या 500 के हो।
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट,
2: गाने
1: गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
2: जी।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस युग डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया। पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था, तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेज आर सो डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, आ या तो कोई कॉल कर रहा है, या तो किसी मैसेज कर रहा है, उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे, तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है
0: दिख जाता है।
1: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एक दिन तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी
0: अच्छा,
1: डिवाइसेस बाहर निकाल दी,
0: क्या बात है, बहुत
1: मैं सब कमरे से
0: बढ़िया
1: बाहर।
0: जी।
1: सो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो उसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो सेट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ, मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी।
0: क्या
1: आपको
0: बात है,
1: बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है। देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेज आर सो डिस्ट्रैक्टिव। जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: मोबाइल में है जबकि
1: जबकि मोबाइल में आप
0: तो
1: लिख सकते
0: सब कुछ
1: हो,
0: है।
1: पर
0: और
1: आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, जो कनेक्ट फील होता है ना आपको,
0: जी बिल्कुल,
1: आपका माइंड वो से बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए
0: हाँ।
1: जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है, वो हाथ से जब लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो
0: बिल्कुल,
1: हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो डिवाइस आपकी आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें, और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल
0: जी
1: दैट हैपेंस। एंड देर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
0: बिल्कुल, कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शंस होते
1: डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं। जी
0: हैं। सही कह रहे हैं। और ये बात है, कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ, लेकिन कागज रखा है साथ में, ये
1: हाँ,
0: बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाए?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल
0: दिल
1: टाइम
0: की
1: फेवरेट।
0: कलम से
1: हाँ,
0: प्रेम
1: दिस माय
0: पुजारी,
1: प्रेम पुजारी का
0: नीरज
1: गाना
0: साहब का
1: है।
0: लिखा
1: जी
0: हुआ,
1: जी नीरज
0: सचिन
1: साहब का है।
0: देवबर्मन
1: जी, तो
0: संगीतकार, तो
1: जी
0: सुनते हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना था, और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं।
1: जी,
0: बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माताजी पिताजी के साथ में ट्रैवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहाँ पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रांग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं, एंड गाड़ी रुक जाती है, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो तो ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा खोड़ा और उस पर एक छोटी सी महिला,
0: महिला बैठी
1: उसने जो
0: है।
1: है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर फॉर अ किड अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं, और फिर वो चली जाती हैं वहाँ से, किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जब मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जब जब वहाँ से निकली थी, और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रज की लठमार, और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है,
0: जी
1: तो वो लहजा जो है ना मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है। स्पेशली पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर, इनफैक्ट वो नत्था वो यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो
0: जी
1: एक
0: जी जी
1: एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज
0: जी
1: मित्र थे
0: जी
1: जिनके जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में, वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए ही बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधि है, फिर ये ब्रज है, आवागमन थोड़ा ब्रज और इसके बीच का है, आवागमन
0: जी
1: मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना, एक एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
0: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।
2: हारा, हारा।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस मोबाइल उठाइए, किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर जाइए और फिर शुरू हो जाती है एक छोटी सी दुनिया। और ये दुनिया और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब कोई फेस्टिवल का समय होता है या फिर घर में कोई ओकेजन, कोई शादी ब्याह का माहौल बनता है। तो ये शर्ट अच्छी है, ये टी शर्ट ट्रेंड में है, ये कलर मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, ये वाली थोड़ी स्टाइलिश है, और ये, अरे वाह, इसे तो कार्ट में डाल ही देते हैं। फिर कभी कभी कार्ट में कपड़े इतने जमा हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि ये कपड़े खरीद रहे हैं या पूरी आलमारी ही ऑनलाइन बना रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी के लिए कपड़े सिर्फ जरूरत ही नहीं, कपड़े हमारी पसंद है, कपड़ा हमारा फैशन है, हमारा स्टाइल है, कभी कभी तो हमारी पहचान का एक हिस्सा भी बन जाता है। किसी को ओवरसाइज टी शर्ट पसंद आती है, किसी को कॉटन की शर्ट, किसी को डेनिम, किसी को सफेद कुर्ता, और किसी को बस वही कपड़ा पसंद आता है जिसमें उसे खुद के होने का एहसास मिलता हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, जिस कपड़े को हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर पसंद करते हैं, उसकी कहानी उस स्क्रीन से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। और शायद हमारी उंगली जब स्क्रीन पर बाय नाउ क्लिक करती है, यानी उसे दबाती है, उससे पहले किसी किसान की उंगली मिट्टी में एक बीज दबा चुकी होती है। आज 7 अक्टूबर है और आज दुनिया मना रही है विश्व कपास दिवस। कपास, वही कपास जो हमारे फैशन के इस पूरी चमकदार दुनिया के पीछे कहीं चुपचाप खड़ी है। हम कपड़े का रंग देखते हैं, उसकी फिटिंग देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, डिस्काउंट भी देखते हैं, लेकिन उस धागे को नहीं देखते जिससे वो कपड़ा बना है। और उस धागे के पीछे होता है एक खेत, जहाँ कोई किसान मौसम का इंतजार कर रहा होता है, बारिश कब होगी, धूप कितनी बढ़ेगी, फसल कैसी होगी, बाजार में भाव क्या मिलेगा। ये सभी सवाल उसके लिए किसी ऑनलाइन ऐप के नोटिफिकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे फोन पर लिखा आता है, योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। लेकिन किसान के लिए इंतजार कुछ और ही होता है। उसके लिए इंतजार होता है फसल कब तैयार होगी, कपास कब खेत से निकलेगी और उसकी मेहनत कब घर की जरूरत में बदलेगी। हमारे लिए कपड़ा एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन उस कपड़े तक पहुंचने के लिए किसी किसान ने शायद महीने भर इंतजार किया होगा। यही इस सफेद सी कपास की सबसे खूबसूरत और सबसे गहरी कहानी है। हमारी स्क्रीन पर कपड़ा चमकता है या दुकानों पर जब हम जाते हैं तो हमें रंग बिरंगे कपड़े दिखते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत मिट्टी से होती है। दुकानों पे हम ब्रांड देखते हैं, मगर किसान भरोसा देखता है। हम डिस्काउंट देखते हैं, वहाँ कोई अपने घर की जरूरत पूरी होने की उम्मीद देख रहा होता है। हम सोचते हैं इस बार कौन सा रंग फैशन में है, और शायद किसान सोच रहा होता है इस बार मेरी फसल का रंग कैसा रहेगा। कपास का पौधा खेत में खड़ा होकर कोई शोर नहीं करता, वो बस बढ़ता रहता है धूप में, बारिश में, मिट्टी के बीच। और फिर एक दिन उसके डालियों पर सफेद कपास दिखाई देती है, लेकिन उस सफेदी तक पहुंचने में किसान के पसीने का रंग मिला होता है। फिर यही कपास धागा बनता है, धागा कपड़ा बनता है, कपड़ा फैशन बनता है, और फैशन मोबाइल स्क्रीन से निकलकर हमारे शरीर तक आ जाता है। और शायद इसीलिए आज विश्व कपास दिवस पर कपास को सिर्फ एक फसल की तरह देखना काफी नहीं है, इसे उस पूरी श्रृंखला की तरह देखना चाहिए जो किसान से शुरू होकर हमारे घर तक पहुंचती है। किसान, मजदूर, कताई, बुनाई, कपड़ा, डिजाइन, फैशन, और फिर हम। हमारी आलमारी में टंगे कपड़ों की भी अपनी यात्राएं होती हैं। कोई कपड़ा बहुत दूर से चलकर आता है, किसी में किसी का हुनर बुना होता है, किसी में किसी का रोजगार, और किसी में किसी किसान का सपना बसा होता है। इसलिए ड्रेसअप होने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि इसकी कहानी भी एक मिट्टी से और किसान से शुरू होती है, और यही आज विश्व कपास दिवस मनाने का असली मतलब भी है। कपास हमें सिर्फ कपड़ा नहीं देता, वो हमें ये भी याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया चाहे कितनी भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, हमारी जिंदगी की कई सबसे जरूरी चीजों की शुरुआत आज भी मिट्टी से होती है। आज हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रैक करके ये देख सकते हैं कि हमारा पैकेट अभी कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन एक बीच का सफर
अभी भी मिट्टी से ही शुरू होता है और उसी सफर में एक किसान की उम्मीद भी साथ साथ चलती है। दोस्तों, फैशन बदलता रहेगा, ट्रेंड बदलते रहेंगे, मोबाइल की स्क्रीन पर नए नए कपड़े आते जाते रहेंगे, लेकिन उस कपड़े के पीछे की मेहनत की कहानी हमेशा उतनी ही पुरानी रहेगी, क्योंकि हर धागे की अपनी एक कहानी होती है और कपास की कहानी में मिट्टी से लेकर हमारी आलमारी तक बहुत सारे हाथ जुड़े होते हैं। तो आइए सलाम करते हैं इन्हीं हाथों को, सलाम करते हैं मेहनत को।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, कभी कभी कोई आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो हमारे भीतर कहीं ठहर जाती है। जैसे शाम होने के बाद कमरे में रह गई रोशनी, जैसे किसी पुराने खत में बची हुई खुशबू, या फिर किसी ऐसे शख्स की याद जिसे मिले हुए बरसों बीत गए हों, लेकिन उसकी आवाज अब भी आसपास महसूस होती है। बेगम अख्तर की आवाज भी कुछ ऐसी ही थी। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर को हम याद कर रहे हैं एक ऐसे ही फनकार को जिसे दुनिया ने मल्लिकाए गजल कहा, बेगम अख्तर। 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में जन्मी अख्तरी बाई फैजाबादी ने संगीत की दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिसे समय भी मिटा नहीं सका। उनकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो एक एक शब्द को ऐसे गाती थी जैसे शब्द नहीं किसी पुराने जख्म को धीरे धीरे से छू रही हूँ। उनकी आवाज को सुनते हुए लगता था कि गाने वाली सिर्फ गीत नहीं गा रही बल्कि अपने सामने बैठे किसी एक इंसान से बात कर रही हैं। उनकी मशहूर गजलों में दीवाना बनना है तो दीवाना बना दे, वो जो हम में तुम में करार था, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, और एक दादरा जो बहुत ही मशहूर हुआ था,

हमरी अटरिया पे आ जा रे, ऐसी रचनाएं आज भी श्रोताओं के दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इन गीतों की खूबसूरती सिर्फ इनके शब्दों में नहीं, खूबसूरती उस ठहराव में है, उस दर्द में है, उस मीठी सी उदासी में है जो बेगम अख्तर की आवाज से निकलकर सीधे सुनने वालों तक पहुंचती है। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई थी, लेकिन उसमें दिल की भाषा भी थी। उन्होंने गजल को सिर्फ महफिलों तक सीमित नहीं रखा, आम श्रोताओं के दिल तक भी पहुंचाया। उनका अंदाज बेहद सादा था, लेकिन असर बहुत ही गहरा। संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, शायद किसी कलाकार का सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं होता, उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है उसकी आवाज का समय से बच जाना। बेगम अख्तर को गुजरे कई दशक हो गए, मगर आज भी जब उनकी आवाज कहीं सुनाई देती है तो लगता है जैसे कोई पुरानी महफिल अचानक सज गई हो। मोबाइल पर आज संगीत की दुनिया एक क्लिक में हमारे सामने है। गाने बदलते हैं, प्लेलिस्ट बदलती है, पसंद बदलती है, लेकिन कुछ आवाजें प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं होती, वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। बेगम अख्तर ऐसी ही एक आवाज है। शायद इसलिए उनकी गजल सुनते हुए हम सिर्फ उन्हें नहीं सुनते, कहीं ना कहीं खुद को भी सुन रहे होते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 102.7 आकाशवाणी उपरा से। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों अब आइए आपको जोड़ते हैं शिक्षा से। और दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा को हम स्कूल की चार दीवारी, किताबों और परीक्षाओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शिक्षा की असली शुरुआत शायद उस जगह से होती है जहां एक बच्चा पहली बार किसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करता है। एक बच्चा जब पूछता है आसमान नीला क्यों है, तो उस सवाल को चुप कराने के बजाय उसे समझाना भी शिक्षा है। किसी बेटी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना भी शिक्षा है। किसी बच्चे को किताब उपलब्ध कराना भी शिक्षा है। किसी ऐसे व्यक्ति को अक्षर पहचानना सिखाना जो कभी स्कूल नहीं जा सका, ये भी शिक्षा है। इसलिए शिक्षा का प्रसार केवल सरकार, विद्यालय या शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, यह हम सब की साझा जिम्मेदारी है। आज हमारे आसपास ऐसे कई बच्चे हैं जिनके हाथों में किताबों की जगह काम की जिम्मेदारी आ जाती है। कहीं आर्थिक परेशानी पढ़ाई के रास्ते में खड़ी है, तो कहीं बेटियों की शिक्षा को लेकर पुरानी सोच। ऐसे में समाज का एक छोटा सा सहयोग किसी बच्चे के भविष्य की दिशा बदल सकता है। हम अपने आसपास किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। पुरानी लेकिन उपयोगी किताबें किसी विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं। किसी बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसके परिवार को समझा सकते हैं। और सबसे जरूरी, हम शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का साधन न मानकर सोचने और समझने की ताकत के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदलता, वह अपने साथ साथ परिवार की सोच बदलता है, समाज की दिशा बदलता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोलता है। कह सकते हैं कि शिक्षा का एक दीपक जब जलता है तो उसकी रोशनी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहती, वह धीरे धीरे पूरे समाज तक पहुंचती है। और शायद इसी वजह से शिक्षा का प्रसार किसी एक व्यक्ति का काम नहीं।

0: हम सब की साझा जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं हमारी ये वार्ता, जिसका विषय है शिक्षित समाज के निर्माण में हमारा योगदान। वार्ताकार हैं रिया कुमारी दत्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिया कुमारी दत्ता है। दोस्तों, आज मैं शिक्षित समाज के निर्माण में हमारा अर्थात युवा के योगदान के पक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए, अगर सूरज न उगे तो दुनिया कैसी होगी? अंधकार से भरी, दिशाहीन और ठहरी हुई। ठीक उसी तरह अगर शिक्षा न हो तो मानव जीवन भी अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे में डूबा रहेगा। शिक्षा केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सोचने, समझने और आगे बढ़ने की कला सिखाती है। यह हमें सही और गलत की पहचान कराती है और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि शिक्षा को भोजन, पानी और हवा की तरह ही जीवन का आधार माना जाता है। हम शिक्षा के महत्व को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारे जीवन को कैसे संवारती है। शिक्षित समाज से पूर्व हमें जानना चाहिए समाज क्या है। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृद्धक समूह को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप अर्थात आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि क्रियाओं में सम्मिलित होता है। जिस प्रकार दोस्तों समाज में आचरण और व्यवहार महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफी कम मेलजोल रखता है। समाज एक ऐसी इकाई है जो सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं एवं पारंपरिक संबंधों सहित असंख्य कारकों द्वारा आकार लेती है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे कैसे आकार देते हैं एवं इसे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हमें किन किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। सर्वप्रथम जो पहली कड़ी है वो शिक्षा होती है। इस 21वीं सदी में हम कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिक्षा पढ़ने और लिखने की क्षमता सिखाती है। पढ़ना लिखना शिक्षा की पहली सीढ़ी है। यदि आप में शिक्षा का अभाव है या लेखन कौशल की कमी है तो आप समाज से दूर हैं, समाज में होने वाली गतिविधियों से दूर हैं। यह कहना सही होगा कि शिक्षा हम सभी को साक्षर बनाती है। आज का युवा इस बात को समझ चुका है, यदि देश के लिए कुछ करना है तो उसे सबसे पहले कार्य करना है और जो कार्य वह कर रहा है उसे पूर्ण लगन व निष्ठा होनी चाहिए। यदि वह अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य ईमानदारी एवं ठीक प्रकार से करता है तो वह देश के विकास में ही तो सहयोग कर रहा है। शिक्षा वह चाबी है जिससे हम मानव कल्याण के सारे द्वार खोल सकते हैं। जैसे कि भारत के एक महान समाज सेवी व नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ही ऑल्सो बिलीव दैट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स मैन फियरलेस, टीचेस यूनिटी, मेक्स अंडरस्टैंड देयर बर्थ राइट्स एंड टीचेस टू स्ट्रगल फाइट फॉर फ्रीडम। इन कुछ ही पंक्तियों द्वारा उन्होंने शिक्षा के सारे पहलू हमारे सामने रख दिए हैं। जिस प्रकार उन्होंने निडरता, समानता, जन्मसिद्ध अधिकार, स्वतंत्रता, अधिकारों के प्रति लड़ना सभी को शिक्षा से जोड़कर बताया है कि भारतवासी को जागरूक होने की कितनी जरूरत है। शिक्षित समाज के कल्याण में युवा का प्रमुख भूमिका एवं योगदान होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी ऊर्जावान और गतिशील होती है, जिसके पास समाज के बदलाव लाने की क्षमता होती है। दोस्तों, एक शिक्षित युवा समाज में सकारात्मक योगदान करता है। अगर एक अशिक्षित शेर से निकला हुआ व्यक्ति जिसने शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश देखा है, उसी के मनोबल को देखकर उसी के गांव व मोहल्ले के अन्य बच्चों एवं युवा प्रेरित हो जाती है। शिक्षा से केवल विकास ही नहीं, परंतु इसके माध्यम से हम समाज की कुरीतियां को भी नष्ट कर सकते हैं। बदलाव दोस्तों इतना आसान नहीं। जिस प्रकार हमारे भारत के कई महान नेता, समाज सेवी ने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, समाज को सही दिशा दिखाई, क्योंकि उनका प्रथम ढाल ही शिक्षा होती है। शिक्षा के जोर पर ही उन्होंने समाज को सुधारने का निर्णय लिया है, जैसे कि राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुश्रुता, जिन्हें हम भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं, एवं डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, फर्स्ट वुमेन डॉक्टर, सावित्रीबाई फुले,

0: रानी चिन्नम्मा, सरोजनी नायडू इत्यादि, जिन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत में आगे बढ़ी एवं अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया। शिक्षा से सामाजिक, आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञान और तकनीकी विकास भी होता है।
1: आपके 4800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
4: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: दोस्तों, दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपने पहचान की ओर लौटने वाला रास्ता हमेशा अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से होकर जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी युवा पीढ़ी नई दुनिया को समझे, नई ऊंचाइयों को छुए और अपनी मिट्टी की खुशबू को अपने साथ लेकर चले। कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दे अनुमति, सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा से।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बाल संघ कार्यक्रम में सभी बच्चों का स्वागत है और आज आपसे बात करेंगी आपकी प्रीति दीदी। और बताइए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे और अपने छोटे भाई बहन और अपने मम्मी पापा के साथ बिल्कुल खुश और मस्त होंगे। बच्चों इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम बाल संग। बच्चों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसे सुनते ही हमारे मन में चांद, तारे, ग्रह और अंतरिक्ष की सुंदर तस्वीरें मन में आने लगती हैं। जी हाँ बच्चों, आज के हमारी चर्चा का विषय है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। जी हाँ बच्चों, क्या आपने कभी रात के आसमान को ध्यान से देखा है? आसमान में चमकते हुए तारे, चांद और कभी कभी तो बच्चों दिखाई देने वाले चमकीले ग्रह हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना? मन में एक सवाल उठता है, देखते हैं ना कि आखिर ये तारे हमसे कितनी दूर हैं? अंतरिक्ष में क्या क्या है? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है? ऐसे ही सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। जी हाँ बच्चों, हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीकी के महत्व के बारे में लोगों को, खासकर बच्चों और युवाओं में जागरूकता बढ़ाना। जी हाँ बच्चों, अंतरिक्ष केवल चांद और तारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के साथ कई ग्रह हैं और बच्चों हमारी पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। बच्चों पृथ्वी पर ही हमें जीने के लिए आवश्यक हवा, पानी और उचित वातावरण मिलता है।

0: इसलिए बच्चों हमें अपनी पृथ्वी को समझना और उनकी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। बच्चों आज अंतरिक्ष विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया है। समय समय पर मौसम की जानकारी, संचार व्यवस्था, टीवी प्रसारण, सही दिशा में आगे बढ़ना और पृथ्वी पर होने वाले कई बदलावों का अध्ययन करने में उपग्रह हमारी मदद करते हैं। बच्चों भारत ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। तो बच्चों इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पर आइए हम अंतरिक्ष के बारे में अधिक जानने की कोशिश करें, विज्ञान में रुचि बढ़ाएं, किताबें पढ़ें, वैज्ञानिक के बारे में जानें और अपने मन में उठे सवालों को दबाएं नहीं बल्कि उनके बारे में जानने की कोशिश करें। बच्चों इसी संदेश के साथ आज की यह छोटी सी अंतरिक्ष यात्रा यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि बच्चों चांद, तारों और ग्रहों की यह दुनिया आपको भी खूब उत्साहित करेगी। जिस बच्चों के सपने आसमान से भी बड़े होते हैं ना, उनके लिए अंतरिक्ष की दूरियां भी छोटी हो सकती हैं। बच्चों आइए इसी बातचीत के साथ सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है गिनती से लेकर बड़े सवालों तक गणित की यात्रा। भेंटवार्ताकार हैं श्री सरफराज आलम, शिक्षक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चौपन, और उनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा।
1: आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसमें कई बच्चे बहुत डरते हैं और कई बच्चे इस विषय से दोस्ती कर लेते हैं। जब भी कठिन विषय की बात आए या डरने की बात आए तो सबसे पहले गणित विषय सामने आता है। तो आज गणित विषय को आसान बनाएंगे, डर भगाएंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चौपन के शिक्षक श्री सरफराज आलम सर जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि हम 1, 2, 3 गिनना कैसे सीखते हैं और फिर वही गिनती आगे चलकर बड़े बड़े सवालों में कैसे बदल जाती है? इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास बातचीत, गिनती से लेकर बड़े सवालों तक गणित की यात्रा। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि गणित की शुरुआत गिनती से कैसे होती है?
2: जी मैम, देखिए यह सवाल बहुत अच्छा है लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। गणित की पूरी इमारत जिस नींव पर खड़ी होती है वह है गिनती। अब सवाल यह है कि बच्चा गिनती सीखता कैसे है?
1: जी,
2: शुरुआत में जब हम किसी छोटे बच्चे को 1, 2, 3, 4 गिनते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है कि उसे गिनती आ गई है
1: जी।
2: लेकिन असल में वह उस समय सिर्फ एक कविता या एक गाने की तरह इन शब्दों को दोहरा रहा होता है।
1: हाँ।
2: उसे यह नहीं पता होता है कि 3 कहने का मतलब क्या है या 3 और 4 में फर्क क्या है।
1: हाँ।
2: इसके बाद अगला चरण आता है जिसमें हम कहते हैं कि 1 से 1 मेल बिठाना, यानी जब बच्चा किसी वस्तु को छूकर या उसकी तरफ इशारा करके गिनता है
1: जी।
2: जैसे एक चॉकलेट को छूकर 1 बोलना, दूसरे को छूकर 2 बोलना, तब धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठनी शुरू होती है कि हर वस्तु के लिए एक संख्या आती है
1: जी।
2: और जब यह अभ्यास लंबे समय तक चलता है तब कहीं जाकर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है जिसे हम संख्या बोध कहते हैं
1: जी, जी।
2: यानी बच्चा यह समझने लगता है कि 5 का मतलब हमेशा 5 चीजों की मात्रा ही होता है।
1: हाँ।
2: चाहे वह 5 गेंदे हो या 5 उंगलियां।
1: हाँ।
2: यही वह पल होता है जब हम कह सकते हैं कि बच्चे ने सच में गिनती सीखना सीख ली, न कि सिर्फ रटा है।
1: मतलब केवल रटा नहीं है, सीख लिया
2: जी।
1: और जब बच्चे गिनती सीख लिए उसके बाद बच्चों को अगला कदम क्या उठाना चाहिए?
2: बिल्कुल सही सवाल है मैम, क्योंकि बहुत से माता पिता यहीं पर आकर उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा 1 से 20 तक गिन लेता है तो अब सीधे जोड़ घटाव पर चले जाओ। लेकिन असल में गिनती और गणित के बीच कई जरूरी पड़ाव होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए
1: जी।
2: सबसे पहला कदम है संख्याओं को पहचानना और उन्हें लिखना। यानी बच्चा जब 5 बोलना जानता है तो अब उसे यह भी सिखाना जरूरी है कि अंक 5 कैसा दिखता है और वह उसे खुद अपने हाथ से लिख भी सके
1: जी, जी।
2: इसमें थोड़ा वक्त लगता है इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए
1: जी। मतलब लिखना भी तो आना चाहिए।
2: बिल्कुल
1: ना?
2: बिल्कुल मैम। दूसरा कदम है छोटी और बड़ी संख्या की तुलना करना सिखाना। जैसे 2 समूह दिखाकर पूछना कि किसमें ज्यादा वस्तुएं हैं और किसमें कम।
1: हाँ।
2: यह बच्चे के दिमाग में बड़ा छोटा, ज्यादा कम जैसी अवधारणाओं को मजबूत करता है
1: जी।
2: जो आगे चलकर गणित के हर हिस्से में काम आता है।
1: बिल्कुल।
2: तीसरा कदम है आगे और पीछे दोनों तरफ से गिनना सिखाना। ज्यादातर

0: कि आगे तो आसानी से गिन लेते हैं, लेकिन 10 से एक उल्टा गिनना उनके लिए चुनौती होती है,
1: वो मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी, यह अभ्यास उनके दिमाग में संख्याओं के क्रम और उनके आपसी संबंध को और पक्का करता है।
1: जी।
0: और हाँ, एक बात जो मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा वह यह कि यह सारा अभ्यास किताब और कॉपी में बैठाकर कराने की बजाय खेल खेल में, ब्लॉक्स में, माचिस की तीलियों से या घर की रोजमर्रा की चीजों से कराया जाए तो बच्चा इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि मजे की तरह सीखता है।
1: उसको तो खेल खेल में वो सीख जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: अगर
0: बिल्कुल,
1: हम माचिस की तीलियां सामने रख दें, ब्लॉक्स रख दें, ब्लॉक्स में बच्चों को वैसे बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उससे बच्चे जल्दी सीख जाएंगे।
0: जी मैम।
1: सर, एक सवाल ये है कि ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इसकी शुरुआत बच्चों को कैसे समझाई जाए?
0: देखिए, यह वह जगह है जहां सबसे ज्यादा बच्चे गणित से डरना शुरू करते हैं, और इसकी वजह यह होती है कि हम इन्हें सीधे अंकों और चिन्हों से सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे सीधे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए 2+3=5 और बच्चे को याद करने को कह दिया, यह तरीका बच्चे को कंसेप्ट नहीं समझाता, बस रटा देता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा एक तय क्रम अपनाया जाए, पहले असली वस्तुएं, फिर तस्वीरें और चित्र, और सबसे आखिर में अंक, यानी सबसे पहले असली चीजों से समझाया जाए। जोड़ को समझने के लिए कहा जा सकता है कि तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, मैंने तुम्हें 3 और दे दी, अब बताओ कुल कितनी हो गई। तो और बच्चा खुद अपनी उंगलियों से या असली चॉकलेट को साथ मिलाकर गिनने दिया जाए। जब बच्चा खुद अपने हाथों से यह क्रिया करता है तब उसे जोड़ का असली मतलब समझ आता है,
1: तब वो प्लस सीख जाएगा।
0: जी। घटाव के लिए इसी तरह कहा जा सकता है कि 5 सेब रखे हैं, इसमें से 2 सेब तुमने खा लिए, अब बताओ कितने बचे, और सामने से 2 सेब हटाकर दिखाया जाए। वस्तु को आंखों के सामने से हटते देखना घटाव के कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है।
1: बहुत आसान से समझ जाएंगे ना।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि भाई हटा दिया गया, अब बताना है कितना बचा।
0: जी,
1: है,
0: जी,
1: तो वो माइनस हो गया।
0: गुणा को समझाने का सबसे आसान तरीका है इसे बार बार जोड़ने के रूप में पेश करना। जैसे कहा जाए 3 प्लेटें हैं और हर एक में 2-2 बिस्किट रखे हुए हैं, तो बताओ कुल कितने बिस्किट हुए।
1: जी।
0: और बच्चे को खुद गिनने दिया जाए 2, 4, 6। इस तरह वह खुद ही समझ जाता है कि 3×2 का मतलब 3 बार 2 को जोड़ना ही है।
1: जी जी।
0: और भाग को सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है बराबर बांटने के रूप में। जैसे कहा जाए 10 टॉफियां हैं और 5 दोस्त हैं, अगर आपको बराबर बराबर बांटी जाए तो हर एक को कितनी मिलेंगी, और बच्चे को खुद अपने हाथों से टॉफियां बांटने दी जाए एक एक करके बारी बारी से। यह क्रिया उसके दिमाग में भाग का कॉन्सेप्ट को मजबूती से बैठा देता है।
1: जी। और सरफराज सर, अक्सर बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है, वो परेशानी है पहाड़े याद करना। कुछ आसान तरीके हैं जिससे बच्चे पहाड़े याद कर ले?
0: जी मैम, यह सचमुच हर घर की कहानी है। शाम होते ही बच्चा किताब लेकर बैठता है, माँ या पापा पहाड़ा सुनने बैठ जाते हैं।
1: हाँ।
0: और आधे घंटे की मशक्कत के बाद फिर अगले दिन बच्चा भूल जाता है। तो इसका हल क्या है, यहाँ मैं कुछ आसान तरीकों को समझाता हूँ। एक तो तरीका यह है कि पहाड़ों को गाने और लय में बदल देना। जब कोई चीज धुन में गाई जाती है तो हमारा दिमाग उसे बहुत आसानी से और लंबे समय तक याद रखता है।
1: जी।
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे पहाड़े गाकर याद करते हैं वे उसे सालों तक नहीं भूलते। और एक और बहुत जरूरी तरीका है थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास कराना। एक ही दिन में पूरा पहाड़ा रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: इसकी बजाय रोज 5-10 मिनट धीरे धीरे एक पहाड़े पर काम किया जाए तो वह पक्का याद हो जाता है और लंबे समय तक टिकता भी है।
1: अच्छा।
0: एक और तरीका है खेल और फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करना। आजकल कई तरह के मोबाइल ऐप और खेल उपलब्ध हैं। इसमें बच्चा प्रश्न उत्तर के खेल की तरह पहाड़े का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास खेल की तरह लगता है तो बच्चे का दबाव कम हो जाता है और सीखना आसान हो जाता है।
1: जी।
0: जब बच्चे को यह समझ आ जाता है कि पहाड़ा सिर्फ किताब की चीज नहीं बल्कि रोजमर्रा के हिसाब किताब के काम आने वाली चीज है, तो उसकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है।
1: अपने आप बढ़ेगी।
0: जी।
1: सरफराज सर, अब मेरा प्रश्न है उन बच्चों के लिए जिन्हें गणित से डर लगता है, उन्हें कैसे समझाया जाए कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है?
0: जी मैम, देखिए यह सवाल बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि गणित का डर अक्सर विषय से नहीं बल्कि हमारे नजरिए से पैदा होता है।
1: जी।
0: जो बच्चा एक बार किसी सवाल में असफल हो जाता है और उसे डांट पड़ जाती है या क्लास में उसका मजाक बन जाता है,
1: जी,
0: वह उसी पल से गणित को अपना दुश्मन मान लेता है।
1: हाँ।
0: और फिर वह डर समय के साथ और गहरा होता चला जाता है। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें बच्चे के मन से यह डर निकालना होगा कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि असफलता की निशानी। जब बच्चा यह समझ लेता है कि गलती करने पर उसे डांट नहीं पड़ेगी बल्कि उसे सुधरने में मदद मिलेगी, तब उसका आधा डर वहीं खत्म हो। दूसरी बात, गणित को हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर दिखाना चाहिए। जैसे बाजार में सब्जी खरीदते वक्त हिसाब लगाना, घर का बजट बनाना या क्रिकेट में रन रेट निकालना, जब बच्चे को दिखता है कि गणित सिर्फ किताब के अंदर की चीज नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी के हर

0: जगह मौजूद है
1: जी।
0: उसे लगता है कि यह तो वह पहले से ही कर रहा है, बस अब उसे थोड़ा तरीके से सीखना है।
1: सर, शुरू शुरू में तो आसान सवाल होते हैं, जैसे 10 रुपए के 2 केले हैं तो 20 के कितने होंगे, या 5 रुपए की 5 टॉफियां हैं तो 10 रुपए में कितनी आएगी। लेकिन धीरे धीरे सवाल बड़े होते जाते हैं, कई बार तो पूरा 1 पेज भी लग जाता है सवाल को हल करने में। अब प्रश्न ये है, बड़े सवालों को हल करने का आसान तरीका क्या है?
0: जी मैम, यह सवाल बहुत ही व्यावहारिक है, क्योंकि यही वह पड़ाव है जहां बहुत से बच्चे गणित से घबरा जाते हैं
1: जी।
0: जब सवाल छोटा होता है तो वे इसे झट से हल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल लंबा दिखता है, कई लाइनों में फैला दिखता है
1: जी।
0: तो देखते ही उनके मन में डर बैठ जाता है, यह तो बहुत मुश्किल है, और वे बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं
1: जी।
0: तो सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है बड़े सवालों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। कोई भी लंबा सवाल चाहे वह कितना भी बड़ा दिखे, असल में कई छोटे छोटे आसान सवालों का ही जोड़ होता है
1: जी।
0: बच्चे को यह सिखाया जाए कि पूरे सवाल को एक साथ मत देखो, बल्कि उसे छोटे टुकड़े में बांट लो और एक एक टुकड़े को उसी तरह हल करो जैसे तुम छोटे सवाल को करते
1: जी।
0: एक और तरीका है कि सवाल को ध्यान से 2-3 बार पढ़ना और यह समझना कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। बहुत बार बच्चे बिना पूरा सवाल समझे ही हल करना शुरू कर देते हैं और आधे रास्ते में जाकर उलझ जाते हैं। इसलिए सवाल पढ़ने के बाद यह देखना चाहिए कि इसमें क्या दिया गया है और क्या पता करना है। यह आदत बड़े से बड़े सवाल को भी सुलझाने में मदद करता है।
1: सर, एक प्रश्न है कि परीक्षा के समय गणित की तैयारी कैसे करें?
0: जी मैम, सबसे पहली बात, परीक्षा की तैयारी अंतिम समय पर शुरू नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। गणित ऐसा विषय है जिसे रातों रात रटा नहीं जा सकता, क्योंकि यह समझ पर आधारित है, याद रखने पर नहीं। इसलिए रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना आखिरी दिनों में पूरा सिलेबस रटने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। कमजोर विषयों की पहचान करना और उन पर ज्यादा ध्यान देना, और एक और महत्वपूर्ण काम और करना चाहिए कि फार्मूला और महत्वपूर्ण नियमों की एक संक्षिप्त सूची बना लेना चाहिए
1: जी।
0: परीक्षा के 1-2 दिन पहले पूरी किताब दोबारा पढ़ने की बजाय अगर एक जगह सारे जरूरी फार्मूले और नियम लिखे हों तो उसे दोहराना बहुत आसान हो जाता है
1: जी।
0: घर पर अभ्यास करते समय भी घड़ी लगाकर सवाल हल करने चाहिए ताकि परीक्षा हाल में समय की कमी महसूस न हो। तो अगर संक्षेप में कहूँ तो परीक्षा की तैयारी का सही तरीका है निरंतर अभ्यास, कमजोर विषयों पर ध्यान, समय का प्रबंधन और सबसे जरूरी शांत और आत्मविश्वासी मन
1: जी। तो आज हमने जाना कि गणित की यात्रा गिनती से शुरू होकर बड़े सवालों तक कैसे पहुँचती है। बच्चों, अगर आप अभ्यास करें तो ये बहुत आसान बन जाती है। बच्चों, आप भी गणित से दोस्ती करिए और सीखते रहिए। तो आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक सरफराज आलम सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
3: सर, 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
4: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
5: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चे अभी इस संदेश से पहले सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था गिनती से लेकर बड़े सवालों तक की गणित की यात्रा। भेंटवार्ताकार थे श्री सरफराज आलम, शिक्षक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चौपन, और उनसे बातचीत कर रही थी बबिता बत्रा जी। तो बच्चों चलते हैं अब अपनी चर्चा की तरफ, और अब हम बात करेंगे बच्चों एक ऐसे पौधे और उनसे मिलने वाले रेशे के बारे में बात करेंगे जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत करीब से देखते और जानते हैं। जी हाँ बच्चों, आज के हमारे दूसरे चर्चा का विषय है कपास दिवस पर। बच्चों हर साल 7 अक्टूबर यानी आज के दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें कपास के महत्व को समझने के साथ साथ कपास उगाने वाले किसानों की मेहनत और योगदान को याद करने का मौका देता है। बच्चों अपने कपास का पौधा जरूर देखा होगा, देखा है ना? चलिए नहीं देखा है तो हम बताते हैं। बच्चों कपास के पौधे पर फूल आने के बाद जब फल तैयार होते हैं तो उनमें सफ़ेद और मुलायम रुई जैसी कपास दिखाई देती है, और बच्चों यही कपास आगे चलकर हमारे कपड़े बनाने के काम में आती हैं। जी हाँ बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी मुलायम सी कमीज, कुर्ता या जो भी हम यूज करते हैं कैसे बनती है? बच्चों कपास का इस्तेमाल उसी में किया जाता है, इसलिए कपास को हमारे जीवन का एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। लेकिन बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि खेत में उगने वाली कपास हमारे कपड़ों तक कैसे पहुंचती है? बच्चों इनके पीछे हमारे मेहनती किसान भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसान खेत में कपास के बीज बोते हैं और पौधे की लगातार देखभाल करते हैं, और बच्चों जब कपास तैयार हो जाता है तो कपास के खेतों को कपास निकाला जाता है। इसके बाद कपास की सफाई की जाती है और दूसरी प्रक्रियाओं के बाद उससे धागा बनाया जाता है। इन्हीं सब प्रक्रियाओं के बाद हम से कपड़ा बनता है। उसके पीछे किसान की मेहनत से लेकर अनेक लोगों का योगदान जुड़ा होता है। बच्चों कपास केवल कपड़े बनाने के काम ही नहीं आती, इसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है, और कपास से जुड़े कई उत्पादों का उपयोग अलग अलग जगहों में किया जाता है। बच्चों इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें किसानों, मजदूरों और इससे जुड़े सभी लोगों के योगदान का सम्मान करना चाहिए, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों आज से जब आप लोग कपड़ा पहने तो उसके रख रखाव का बखूबी ख्याल रखें। ये सोचिए कि इस कपड़े के पीछे कितने किसानों की मेहनत लगी है। बच्चों इन्हीं चर्चा के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
3: बच्चों अभी आपने सुना इस प्यारे से गीत को, लेकिन बच्चों देखिए अब हमारे बाल संग कार्यक्रम का समय भी धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, लेकिन जाते जाते एक खास बात। तो बच्चों आइए आज हम छोटा सा संकल्प लेते हैं कि हम पौष्टिक भोजन करेंगे, खाने खाने से पहले हाथ जरूर धोएंगे, फल और सब्जियां खाएंगे, पर्याप्त

पानी पियेंगे, जंक फूड का सेवन कम करेंगे और रोज खेलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। याद रखिए बच्चों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। खेल सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, इसी तरह इसी बातचीत के साथ हमारे बालशंक कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होने वाला है। सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम बालशंक, जुड़े रहिए हमारे संग और अपने प्रीति दीदी को दीजिए अनुमति। बच्चों, जय हिंद।

बच्चे भी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग आकाशवाणी के हमोबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया के तौर पर आज 25 बरिस पूरा कैलन है। ए मौका पर नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में प्रधानमंत्री कहने कि 25 बरिस में उन्हें जनता से मिलल भरोसा आ एह दौरान हासिल अनुभव उनकर सबसे बढ़हन पूजी हवे।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो आज लखनऊ में जीपीओ के लगे पटेल पार्क में सेवा ज्योति जत्रा में विकसित भारत संकल्प सभा के संबोधित कैले। एह मौका पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके उपलब्धि पर बधाई देने। वहां के कहने कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 25 बरिस के जनसेवा में असंभव के संभव कई के दिखौले हमें। एह मौका पर प्रधानमंत्री मोदी आ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का वर्चुअल संबोधनों प्रसारित कैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार प्रतिबद्धता सुशासन से प्रेरित होके सरकार बरिस 2047 ले विकसित भारत बदे लगातार काम कर रही हो। समावेशी विकास आ सामाजिक मजबूती से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा हो। आज खास श्रृंखला में जानल जाए कि यूपीआई एह नजरिया के कौने तरीन से साकार कैले बा।
2: भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं

0: हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौका पर 17 सितंबर के गुजरात के वडनगर से शुरू भइल सेवा संकल्प जत्रा को आज वाराणसी में समापन हो गई। इस जत्रा के दौरान करीब 300 जिलन आ 90 गांवन को भ्रमण कल गई। केंद्र सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत मानल गईल कामन के सूची अधिसूचित कई दिले हो। नौका ग्रामीण काम ढांचा के तहत कुल 375 कामन के मानल गईल हो।
3: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गोरखपुर के लेके कुछ और जिलन में आज रुक रुक के हो रहल बरखा से जनजीवन थोर के प्रभावित भइल बा। ए बिचे मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज व बिहने कुछ जगहिन पर बारिश चाहे गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना जतौले हो। विभाग ए अंचल में कहीं कहीं बिजली गिरले के साथ तेज झोंकेदार बेरियो चलले का येलो अलर्ट जारी कैले बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, एफएम 102.7 पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। समय है सूचना और कार्यक्रम विवरण का।
5: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, इस सूचना के बाद अब आइए आपको जानकारी दे देते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार शाहिदा पुत्री मोहम्मद इरशाद, जो वार्ड नंबर 7 लंका कॉलोनी के पास D350 तुर्रा पिपरी तहसील सोनभद्र के रहने वाली हैं, इनका हुलिया इस प्रकार से है। उम्र करीबन 15 वर्ष, लंबाई 4 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। सुनैना पुत्री जितेंद्र, जो बिल्ली मारकुंडी खरेटिया ओबरा जनपद सोनभद्र के रहने वाली हैं और दिनांक 2 सितंबर 2026 से लापता हैं, इनका हुलिया

कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 से। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 और रात 8:30 से। श्रोताओं से बस थोड़ी ही देर में यानी 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 6:50 और रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों का सबरस कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर और रसधारा कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10 का। हम आपको एक बार फिर से बता दें, चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के हम ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम, राम, राम।
1: नंदू भैया
0: जलेबी भौजी आपो के राम राम। और देखा अपन पंचायती भी लग गई, पंच भैया लोग जैसे अपन समय होला भैया इंतजार करत रहले कि देखे आज अपन पंचायती में का संदेश मिली का जानकारी मिली।
1: जानकारी के बाद देखा कहला ना भैया तो हमके अपन ये पंचायती इतना बढ़िया लगेला कि ए पंचायती में हमन हर तरह के बात करी ला जाए, बात चाहे डॉक्टरी के होए, चाहे कानून के होए, चाहे तीज त्योहार के होए, चाहे खेती बाड़ी के होए। देखा ये कैसन पंचायती है ना, एमे हर भांति भांति के लोग आवेलन, विशेषज्ञ आवेलन, डॉक्टर आवेलन और वही तरह से विभिन्न प्रकार के जानकारी मिलेगा।
0: यही से देखा एकर कहल जाला कि अपन सजल थरिया हो, एमे सब कुछ आपके देखे के मिली। और एक बात और कहब जलेबी भौजी की देखें, जब भी अपन किसान भैया लोग चाहे पंच भैया लोग से कौनो चूक होला तो भैया बड़ा बेसब्री से उनकर इस चीज के इंतजार रहला कि भैया एकर निदान कैसे मिले या का होई। लेकिन देखें कहीं न कहीं अब अपने कार्यक्रम में किसान भैया लोगन के या पंच भैया लोगन के सीधा सीधा संवाद अपन विशेषज्ञ लोग भैया से हो रहा बा इस समय, और वो अपन जानकारी सीधा सीधा मन के बात जोन बा जोन भी उनके मन
1: खेती बाड़ी से जुड़ल जोन समस्या बा सीधा संवाद और सीधा समाधान।
0: तो कहीं न कहीं उनकर भी मनोबल बा। और देखें आज के दिन भी बा किसान भैया लोगन के हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में अपन रवि में दलहनी और तिलहनी फसल की तैयारी कैसे करें किसान भैया लोग, और जो भी किसान भैया लोग एकरे बारे में जानकारी जुटावल चाहत हो कि भैया या पिछले बार जो उनसे चूक भइल बा इन साल ना होके, ऐसे अपन सीधा फोन करी है। और जोन बा एकरे खातिर अश्विनी सिंह जोन बा विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र से हो जानकारी भी दिए भैया लोगन के। और देखें कहल जाला ना कि अगर खेती बाड़ी में देखें इस समय जलेबी जी चाहे मक्का कहला, चाहे अपन धान कहला, तिल कहला, चाहे उर्द कहला, चाहे अपन कई तरह के ऐसा खड़ा फसल हुआ जो उन कुछ पके के अवस्था में हुआ और कुछ अभी पकत हुआ।
1: बिल्कुल देखा ए समय हमारा जो धान के बात कहला एकदम हरियर लहलह बा और कहीं कहीं तो धान देखा गाभे आ गेल बा, फूटे लगल,
0: कहीं बाली भी निकल चुकल बा। जैसन है प्रजाति के भैया लोग लगेले हुआ वही हिसाब से अपन होत बा। लेकिन एक चीज हम ये बात कहल चाहती, जैसे अभी मक्का के बात होत बा, तिल के कटे के बात होत बा, उर्द के कटे के बात होत बा, मूंगफली के बात होत बा, तो एमे एक चीज देखल जला जलेबी भौजी कि कहीं न कहीं जब भैया लोग कुछ जल्दीबाजी कर देवल है तो उनके बाद में बड़ा नुकसानी उठावे ला पड़ला। काहे से कि अगर पूर्ण रूप से अगर पकल अगर फसल बा देखे 95% भी अगर फसल पक गिल बा तब वो कट जाए के चाहिए, लेकिन अगर 60 बा 70 बा तो देखे अगर आप उतना समय में काट

0: हैं तो 30% जो ना आपके फल व फलत बा
1: दाना पोढ़ नहीं होला।
0: या तो पिचक जाई दाना, और या तो जब आप ओके कटाई करके छांट बरा के रखी हैं तो कुछ दिन बाद ओह में जोन बा वो खराब होए के अंदेशा जे के घून कर लें या और कौनो चीज कीड़ा मकोड़ लगे के जोन अंदेशा होला वो में ज्यादा होला। तो कहीं न कहीं किसान भैया लोग अपन बिया ठोक बजा के दांत से किटकिटा के अपन देख लेवे कि फसल हमार पूर्ण रूप से तैयार बा, तब जा करके ओकर कटाई करें। और कहीं न कहीं जो उन बा कुछ किसान भैया लोगन पिछले बार से चूक जाले कि भैया अब लगावे के बा उनके मक्का अरहर वो में लगावत हुआ धान तो उनके पते ना बा। तो ऐसे देखें अपन हमेशा बात अपन पंचायती में होला कि हमेशा माटी के जांच करा लिया जाए
1: एकदम सही बात बा।
0: कि माटी के जांच अगर हो जाए तो माटी के जांच से एक चीज देखा फरिया जाला कि भैया कौन माटी हमार कौन फसल खातिर उपयुक्त तो बा, और कौन फसल इनमें जो लेब ओमे हमके कौन कौन पोषक तत्व तो देवे के होई, कौन अधिक देवे के होई, कैसे आपन भैया अब पता चलल कि नाइट्रोजन तबा अपने खेत में भरपूर मात्रा माटी में फिर भी भैया अपन झोंका झोंकी करत है, तो ओसे एक तो उनकर जवन बा पैसा भी नुकसान होई, माटी भी बीमार होई और उनकर फसल भी बढ़िया ना रही।
1: बिल्कुल सही कहलन हा। तो अगर हम लोगन समय से पर चर्चा करत है तो श्रोतागण के हम लोगन के सब किसान भैया के फर्ज बनेला कि माटी के शोध करैले के बाद ही अपने फसल और बीज के चयन करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सोचन करें, और इनसे कई तरह के इनकर जोन बा बचत हुई, चाहे पोषक तत्व के जानकारी इनका जब मिल जाए तो ओमे जोन बची इनकर वो अपन पैसा बची। अब पता चलल कि हमके तो यूरिया ना देवे के बा लेकिन हम देवो थे तो ओकर पैसा बच जाए, उर्वरक के जोन बा सही उपयोग होए लगी कि हमके कितना चीज कितना देवे के बा, उत्पादन में जोन बा अपन वृद्धि हो जाए, जब सही चीज के जानकारी मिल जाए तो फसल अपन अच्छा होए लगी।
1: भैया देखो, जैसे हमारे शरीर के जब संतुलित आहार मिलेला ना तो समुचित विकास होला, रोग मुक्त शरीर रहेला। ठीक
0: बिल्कुल
1: वही तरह से हमार फल पौधा बार बगीचा बा कि जब उनके सही मात्रा में खाद पानी मिली, सूर्य के प्रकाश मिली, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, तो देखर ओकर भी बढ़िया विकास हुई, और चाहे वो फल होए, चाहे सब्जी होए, चाहे अनाज होए,
0: बिल्कुल
1: अच्छा पैदावार हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ओकरे साथ साथ जोन बा माटी के जैसे आप स्वास्थ्य के सुधार के बारे में कह लें, वही तरह से अपन माटी भी बीमार होला तो माटी भी अपन स्वस्थ रही, और ओकरे साथ साथ जोन आबो हवा बा पर्यावरण बा ओमें भी कई तरह के अपन सुधार मिले के मिली, सुधार भी हुई कि जैसे जल प्रदूषण के बात हो गई या वायु प्रदूषण के बात हो गई जोन भी बा उसे भी निजात मिली। तो कहीं न कहीं सब कुछ मान करके जान लिहल जाए कि मृदा स्वास्थ्य जोन बा परीक्षण जरूर करावें, माटी के जरूर जांच करावें, तब जा करके कहीं अपन बात बनी।
1: और एकरे साथ साथ रबी में दलहनी और तिलहनी फसल के तैयारी कैसे बेहतर हो सके, ऐसे जुड़ल जौन भी हमार सवालात बा ओकर समाधान करे खातिर आज देखा फोन पर वार्ता का संवाद खातिर जुड़त हवन अश्विनी सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विभाग सोनभद्र से। तो हम कहब कि हम लोगन एके सुनल जाए।
0: सुनल जाए लेकिन आवे ऐसे पहले कुछ संदेश भी सुन लिया जाए।
1: चल तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
3: पंच भैया लोग देखें, प्रत्येक बुधवार के हम लोगन अपने कार्यक्रम ग्राम जगत में हेलो किसान कार्यक्रम लेकर आईला, जौने का रिकॉर्डिंग हम लोगन प्रत्येक रविवार 4:30 से 5 के बीच में करीला, और जौन भी आप लोगन का समस्या होला ओकर समाधान विशेषज्ञ भैया लोगन द्वारा हम लोगन करवाई ला। देखें आज हेलो किसान में हम लोगन के साथ हम अश्विनी सिंह साहब विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र, और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि रवि फसलन का तैयारी और मृदा प्रबंधन ये समय हम लोगन कौने तरीके से करी। डॉक्टर साहब नमस्कार।
4: नमस्कार सभी किसान भाइयों को।
3: अश्विनी सिंह साहब, जौन अपन किसान भाई लोग हुआ धान लगौले हुआ, मिर्च भी अपने अंचल में बहुत बड़े पैमाने पर खेती भई रही है, लेकिन अपने किसान भैया लोगन का पंच भैया लोगन का जौन मिर्च का फसल रहा है बहुत अधिक नुकसान हो गिल बा, तो उ ई सोचत हुआ कि मिर्च का नुकसानी का भरपाई हम लोगन अगैती मटर या सरसों से कई नहीं, और ओकरे बाद ओके काट का दिसंबर लास्ट तक हम लोगन या जनवरी प्रथम सप्ताह तक गेहूं का भी बुआई कर दही के एक अतिरिक्त फसल हम लोगन के और प्राप्त हो जाए। तो अश्विनी सिंह साहब, आपका आज अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बतावें कि कैसे अपन किसान भाई लोग रवि फसलन का तैयारी करें, खासतौर से अपने अंचल सोनभद्र में।
4: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस साल जो है मिर्च में आप देखेंगे कि लगातार बारिश के वजह से
3: जी।
4: मिर्च में जो है बीमारियां बहुत ज्यादा आ गई, जिसमें जो है लीफ कर्ल जो उनका सबसे प्रमुख मिर्च की बीमारी है वो इतना ज्यादा आ गई कि उसमें किसान जो है उसमें कुछ कर ही नहीं पाए। उसका सबसे प्रमुख कारण था वर्षा
3: जी, जी।
4: लगातार वर्षा की वजह से लगातार मौसम जो है कि बादल का था, जिससे किसान अपनी दवाई का या किसी चीज का प्रयोग नहीं कर पाए, जिससे उनकी मिर्च जो है पूरी तरीके से गुरचाकर और लगभग लगभग समाप्त हो गई।
3: देखें साहब, एक फोन आ गया बा। हेलो
5: प्रणाम।
3: हाँ हाँ प्रणाम भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलता?
5: शिव कुमार, ग्राम नगवा दुधी ब्लॉक से।
3: शिव कुमार भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगन के साथ विषय वस्तु विशेषज्ञ अश्विनी सिंह साहब हम, तो जौन आपका प्रश्न हो अश्विनी सिंह साहब से करें
5: जी।
3: हाँ पूछें प्रश्न भैया।
4: पूछें भैया,
5: सबसे पहले तो खेत खाली है उसमें आलू का रोपाई करना है।
4: हाँ।
5: और सरसों का खेती जी, तो पहले उसका खेत का तैयारी कैसे करें?
4: आपके खेत में कुछ लगल है, खेत खाली रहल है
5: जी? अभी अभी तो बादाम लगा हुआ है, लेकिन अब बादाम जो है उबरने वाला है।
4: कितना दिन में?
5: लगभग 10 से 15 दिन में।
4: अच्छा ठीक बा। ये समय देखें कि आलू का फसल अगेती आलू का भी आप बुआई कर सकलन अपने खेत में बादाम निकलने के बाद, और जो है सरसों का भी आप तैयारी कर सकलन। सरसों बदे आप जो बहुत विशेष ध्यान रखिए कि सरसों का जो आप बीज ली हैं वो जो है 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज खरीद ली हैं, और खेत के बिल्कुल जो है 2 से 3 बार जुतवा के बिल्कुल मिट्टी होके भुरभुरा बना ली हैं। असिंचित दिशा पानी की सुविधा आपके यहाँ बाग नहीं
5: जी? जी
4: हाँ, तो पानी की अगर सुविधा बात है, आप अधिकतम 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक आप सरसों की बुआई अपने खेत में कर दी है।
5: अच्छा अच्छा।
4: उसे अब जब खेत में आप जब सरसों की बुआई करी है तो उसी के साथ साथ सिंगल सुपर फास्फेट खाद वाला आप जो है कि अपने खेत में वही के जो है उसी खाद के प्रयोग करिए, सिंगल सुपर फास्फेट के ही आप प्रयोग करिए। कारण यह है कि जो जितना भी हमारे तिलहनी फसल है उसमें सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
5: सल्फर
4: का, और दूसरी
5: चीज हाँ, बीघे में कितने सल्फर छोड़ना है उसमें?
4: सल्फर आप बीघे में कम से कम आप मान चले कि कितना बोए, कम से कम आप जो है 40 से 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट।
5: अच्छा।
4: सिंगल सुपर फास्फेट आपके देवे अपने सरसों खेत में। दूसरी चीज, सरसों के फसल में आप दो चीज के बहुत विशेष ध्यान दी है कि आप जब सरसों आपके जब जम जाये तो ओकर बिरलीकरण बहुत अनिवार्य है। अगर जहाँ सरसों ज्यादा जम गल है ओके आप उखाड़ दी है, किसान ओके उखाड़े में बहुत हिस्सा, लेकिन आप बिरलीकरण कर दी है, एक समय के बाद आप सरसों के फसल में निपिंग या ओकर

0: जो ऊपर वाला तना हुआ है ओके आपके
1: जी
0: तोड़े का
1: जी
0: जो ज्यादा ज्यादा ब्रांच आवे।
1: जी
0: हाँ
1: अच्छा, और ये है कि अब जैसे फल फूल में जब सरसों आता है तो उसमें बहुत सारे जो है कीड़ा
0: हाँ
1: लगते
0: ये
1: हैं
0: अगर
1: उसमें,
0: आप 15 अक्टूबर,
1: माहो।
0: हाँ 15 अक्टूबर तक आप जब बुआई कर दें अपने सरसों का, तो आपके दिसंबर में सरसों में फूल आ जाए, जौने से ये समस्या आपके खेत में बहुत ही कम आई। आप 15 अक्टूबर
1: जी
0: के बाद जितना आप सरसों लेट करिए उतना आपके
1: जी
0: खेत में माहो और कीड़ा के प्रकोप आवल करिए। आप वो समय देखिए कि दिसंबर या जनवरी प्रथम सप्ताह में आप देखिए कि मौसम में जैसे ही बादल आयल, जैसे ही बादल आयल वैसे ही देखिए कि आपके खेत में माहो का प्रकोप होने लगी। माहो का प्रकोप आप जैसे ही होने लगी आप अपने खेत में लगातार घूमत रही हैं, एक दो भी तीन पौधा अगर माहो से ग्रसित है आप तत्काल कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड के प्रयोग आप अपने खेत में कर दी हैं। लेकिन अगर आप
1: अच्छा
0: 15 अक्टूबर तक अपन सरसों की बुआई कर दी हैं तो आपकी समस्या लगभग लगभग न मिली।
1: जी जी
0: जी
1: अच्छा
2: बिल्कुल शिव कुमार भैया, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कैलें और जौन भी आपका समस्या रहल हो ओकर समाधान भल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी सिंह साहब, हम लोग रवि के तैयारी का बात करत रही है जा, तो ये अगर रवि के तैयारी अपन किसान भैया लोग करत हो तो कौने कौने प्रमुख बात का वो ध्यान रखें?
0: हाँ प्रमुख बात के ध्यान रखें, रबी के तैयारी में अभी जो हम लोग समय चला था,
2: जी जी
0: जौन भी किसान भाई जैसे आप मिर्च के बात के लेना, मिर्च के फसल जौन खराब हो गल बा तो वैसन खेत हमारे तैयार हुई। कुछ किसान भाई खरीफ में बुआई न कर पुल हुई वो हमारे खेत खाली हुई। तो ये दोनों तरीके के जिकरे पास खेत खाली हो तत्काल अपने खेत की तैयारी करके सरसों की फसल का आप जो है ना बुआई अपने खेत में करें।
2: जी
0: उससे आपके लाभ भी मिली कि आप जब सरसों की फसल आप अपने खेत में करी हैं तो आप देखें कि लगातार तिलहन का जो है ना कि MSP भी तिलहन के बढ़ावा था, ओकरे साथ साथ आप अपने घर पे भी तेल का उपयोग कर सकल और मार्केट में भी आप तिलहन को उत्पादन के लिए के बाद अब तत्काल जो है ओकर आप अच्छा रेट आपको मिल सकेला। अब रहल बात एक वैज्ञानिक विधि के, तो वैज्ञानिक विधि में आपके जितना जौन भी किसान भाई हमारे बात जहाँ तक पहुँचत हो, आप अपने खेत के 2 से 3 बार बढ़िया सा आप ओके खेत जुतवा दें। जुतवले के बाद आप 1 से 1.5 किलो, चूंकि बीज दर सरसों में बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि
2: जी
0: इसका
2: जी
0: बीज जो है बहुत महंगा मिलता है आपके सरसों का, तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़
2: जी
0: आपको बीज लेना है। और बीज को देखिए ज्यादातर किसान हमारे छिटकवा विधि से ही
2: हाँ बुआई
0: बुआई
2: करना।
0: करते हैं। मेरा तो अनुरोध रहेगा कि सभी किसान भाई लाइन से ही बुआई करें, लेकिन अगर छिटकवा विधि से कर रहे हैं तो आप उसको 1 से 1.5 किलो से ज्यादा बीज आप मत अपने अपने खेत में मत छिटकिए।
2: जी
0: दूसरी बात, उसमें जैसे ही आपने बुआई की उसी समय आपको फर्टिलाइजर के रूप में उर्वरक के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट का ही प्रयोग करना है, या किसी भी से उर्वरक जिसमें सल्फर की मात्रा हो आप उसको उसकी प्रयोग करेंगे।
2: डॉक्टर साहब एक फोन आएगल बा। हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
2: हाँ हाँ नमस्कार भैया, अपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हैं?
1: हाँ रमाकांत मौर्य बोल रहे हैं, हम ग्राम बीड़र जल्दी ब्लॉक के अंतर्गत है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ।
2: रमाकांत मौर्य भैया, आज आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें अश्विनी सिंह साहब हम लोगों के साथ हुआ आज अपने स्टूडियो में, और आप कृषि विभाग का विषय वस्तु विशेषज्ञ हो, आप उनसे अपन प्रश्न करें।
0: जी बताओ।
1: हाँ तो अभी इस समय जो है कुछ मक्का की खेती हमारी तैयार हुई है, उसके बाद की फसल जो है एक हमको बुआई करनी है मसूर का,
0: मसूर का जी।
1: कौन सी प्रजाति का अच्छे उन्नत का किस्म है उसके
0: मसूर,
1: बारे में।
0: आप मसूर
1: हाँ
0: ही लगी हैं कि और कुछ लगी हैं?
1: अभी तो सरसों का भी प्लानिंग है, अगर अच्छी बुआई में हो जाए तो सरसों का भी उत्पादन किया जा सकता है।
0: नहीं तो मसूर
1: तो
0: क्या है, हाँ तो
1: हाँ
0: आप जैसे कि मसूर
1: मतलब 1 एकड़ के आसपास हमको बुआई कराना है, उसमें मक्का का फसल
0: मक्का
1: अभी हमने तोड़वाया है तो
0: मक्का आपका कब हार्वेस्ट हो गया? मक्का खेत खाली हो गया अभी?
1: हाँ मक्का खेत खाली हो गया है।
0: हाँ तो मक्का अगर खेत खाली हो गया तो मसूर का जो है कि बहुत उपयुक्त समय इस समय चल रहा है। यदि
1: जी
0: आप
1: जी जी
0: चाहें तो मसूर और सरसों की इंटरक्रॉपिंग भी आप अपने खेत में कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: मतलब जो
1: अच्छा
0: है 1 लाइन 2 लाइन मसूर के लगा दीजिए उसके बीच में सरसों लगा दीजिए। मसूर क्या है कि छोटा पौधा है,
1: हाँ हाँ
0: सरसों
1: हाँ
0: क्या है वो बड़ा पौधा है, तो ये दोनों की इंटरक्रॉपिंग भी एक साथ आप मसूर और सरसों कर सकते हैं। अगर आपको मसूर और सरसों की इंटरक्रॉपिंग करनी हो तो मसूर
1: जी
0: और सरसों के बीच में 3 से 4 फीट की दूरी होनी चाहिए, और मसूर और सरसों दोनों के बिल्कुल उपयुक्त समय इस समय चल रहा है बुआई के लिए।
1: जी जी
0: मसूर के
1: भैया
0: लिए आप ध्यान रखिए कि मसूर अगर आप इंटरक्रॉपिंग में नहीं, अगर सीधा सीधा मसूर ही बो रहे हैं अपने खेत में तो

0: 12 से 15 केजीस आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मसूर अपने खेत में डालना है। मैं तो चाहूंगा कि लाइन से आप बुआई करें, अगर छिटकवा कर रहे हैं तो 12 से 15 केजी आप जो है मसूर की आप अपने खेत में बुआई करें। और यदि आपको सरसों आप अपने खेत में करना चाहते हैं तो आपको जो है 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सरसों अपने खेत में छिटकवा विधि से या करना है। अब उसमें दो तीन चीजों का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण रखना है।
1: हाँ सर, हाँ मसूर में जैसा उन्नत किस्म का कोई बीज जैसा कोई।
0: मसूर में उन्नत किस्म की बहुत सारी बीजें हैं आपको जो, चूंकि देखिए आपके कैसा खेत है उस और आपके खेत में पानी की कैसी व्यवस्था है, जल निकास है, जल भराव है, इस हिसाब से आप
1: जल
0: जो
1: भरा तो नहीं है उसमें, जल निकास की भी व्यवस्था है उसमें, धाननुमा खेत है।
0: हाँ तो यही चीज आप जब इसके लिए आप अपने नजदीकी ब्लॉक पे जब जाएंगे तो हिसाब से वहां पे अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग किस्मों का वो है आपको मिलेगी। लेकिन मसूर खेत में आपको ध्यान ये रखना है कि पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऐसा खेत आपका तैयार हो कि पानी बिल्कुल ढलान के माध्यम से एक तरफ ढालो, पानी गिर जाए, निकल जाए, नहीं तो मसूर में, चने में, अरहर में, इन सब में एक बहुत खतरनाक बीमारी लगती है जिसको आद्र गलन कहते हैं। आप देखेंगे कि बीच बीच में आपका मसूर का पेड़ उखड़ जाएगा, तो ये अधिक पानी के वजह से हो जाता है। तो आपको इन चीजों का विशेष अपने खेत में ध्यान रखना होगा। सरसों के विषय में मुझे एक चीज कहना है कि सरसों यदि आप अपने खेत में प्लानिंग कर रहे हैं तो
1: जी
0: सरसों
1: सर,
0: के आप जब खेती करिएगा तो उसमें सल्फर युक्त उर्वरक का ही
1: अच्छा
0: आप अपने खेत में प्रयोग करिएगा। क्या है कि
1: अच्छा
0: हाँ सल्फर जो सरसों में या सरसों के तेल में या किसी तेल में जो झाग होता है वो सल्फर की वजह से होता है। तो आप जितना अच्छा खाद सल्फर का ये सब का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा आपका उत्पादन होगा।
1: तो सल्फर का प्रयोग बीज से पहले की उसमें
0: नहीं,
1: करके बीज
0: बुआई के
1: का प्रयोग
0: समय,
1: करके।
0: बुआई के समय जब आप बुआई करेंगे तो उसमें अगर आप उर्वरक डालते हैं तो उस समय आप
1: जी
0: सल्फर युक्त उर्वरक का ही प्रयोग करें। यदि आप बाद में करते हैं तो आप उस समय भी सल्फर युक्त उर्वरक का ही प्रयोग करें, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट। हाँ
1: ठीक
0: पहले
1: है सर।
0: सिंचाई के बाद आप उसकी आप कर दीजिएगा।
2: रमाकांत मौर्या, आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलेन और जौन भी आपको प्रश्न रहा हो ओकर उत्तर आपके मिलल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अब हम लोग जो है अपने रबी फसल में आगे बढ़ल जाए। सरसों के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल चना।
2: जी,
0: अब आप चना की खेती लगातार जो है कि हमारे क्षेत्र खासकर सोनभद्र या सोनांचल में हो रही है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ पे जो हमारी मिट्टी है वो इस तरीके से है कि अगर वर्षा हुई, वर्षा होने कुछ देर बाद अगर हम देखेंगे तो मिट्टी हमारी पानी जो है मिट्टी से खत्म हो जाएगा। तो
2: जी
0: चने में हम किसान भाइयों को एक चीज कहना चाहेंगे कि चना की तो बुआई, चूंकि इसका बीज बड़ा होता है तो इसकी बुआई बड़े आराम से हम सीड ड्रिल के माध्यम से कर सकते हैं, और ये जो है सीड ड्रिल या सुपर सीडर्स के माध्यम से बड़े आराम से हम अपनी बुआई चने कर सकते हैं। उसमें क्या है कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवम्बर उपयुक्त समय चने की खेती के लिए होता है। 60 से 80 केजी चना आपका प्रति हेक्टेयर के दर से आपको अपने खेत में डालना है।
2: जी
0: उसमें भी आप देखेंगे कि दो तरीके के चना आएगा, एक छोटा चना आता है, एक बड़ा चना आता है। यदि छोटा किसान के छोटे चने की बुआई हमारे किसान कर रहे हैं तो 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और बड़ा दाना कर रहे हैं तो 80 केजी पर हेक्टेयर के
2: भैया
0: हिसाब से।
2: देखें एक और फोन
0: जी
2: आएगल अपने कार्यक्रम में। हेलो।
1: जी हेलो,
2: हाँ भैया, अपन नाम बताओ या आप कहाँ से बोलत हो।
1: हमारा नाम पन्ना लाल है।
2: पन्ना लाल भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज
1: जी
2: हम लोगों साथे अश्विनी सिंह विषय वस्तु विशेषज्ञ हवा, रवि फसलों का तैयारी और मृदा प्रबंधन पर बातचीत होता। कोनो प्रश्न हो तो जरूर आप अश्विनी सिंह भैया से करें।
0: जी भैया बताओ।
1: अलसी की खेती करल चाहते हैं।
0: अलसी के, हाँ
1: हाँ, तीसी।
0: हाँ तीसी तीसी
1: जी
0: तीसी खेती। अभी आपके खेत खाली है कि जो है कोई फसल लगा है?
1: फसल अभी लगा है,
0: कौन सी फसल है?
1: मकई
0: धान?
1: लगा, मक्का है।
0: अच्छा मक्का है।
1: जी
0: तो मक्का अभी कट गया है कि अभी उसमें है?
1: वो निकल गया है, कुछ नहीं लगा, तो मक्का निकल गया है।
0: तो देखिए तीसी का जो ये हमारी तिलहनी फसल है,
1: जी
0: तो तिलहनी फसल के लिए आपको उसमें तीसी का जो हमारा समय है वो आपके
1: जी
0: 15 अक्टूबर से लेके जो है 30 अक्टूबर के बीच में तीसी हमको अपने खेत में लगा देनी चाहिए। और तीसी के लिए हमको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि तीसी जो है ब्रॉड आप छिटकवा विधि से या अपने खेत में प्रयोग करेंगे,
1: जी जी
0: तो उसमें करना यह है कि अगर
1: अच्छा
0: आप एक तो अपने
1: बहुत
0: खेत की जो
1: बड़ा
0: है जुताई करा दीजिए, और
1: जी जी
0: ढाल
1: जी
0: को
1: धन्यवाद
0: एक ही
1: आप
0: तरफ
1: बहुत
0: ज्यादातर
1: धन्यवाद
0: प्रयास
1: आपका।
0: करिए कि ढाल हमारे खेत में।

0: बनी रहे,
1: जी
0: जिससे कि
1: जी
0: अगर कहीं अब
1: अच्छा
0: कभी अधिक वर्षा हो जाए तो हमारा पानी जो है
1: निकल जाए,
0: निकल जाए और
1: समाप्त
0: आराम
1: हो
0: से
1: जाए,
0: निकल जाए।
1: समाप्त
0: और तीसी
1: जी
0: वगैरह की ये जो फसल है ये बहुत
1: समाप्त
0: बड़ी
1: हो
0: नहीं होती,
1: जाए
0: छोटे छोटे होते हैं। तो
1: जी
0: तीसी
1: जी
0: के साथ अगर आप चाहेंगे तो सरसों की इंटरक्रॉपिंग, सह फसली खेती सरसों की आप कर सकते हैं तीसी के साथ। उसमें आप क्या करेंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आप जो है दोनों फसलों को आप ले सकते हैं। और उसमें तीसी में आप एक विशेष ध्यान रखिएगा कि ये भी तिलहनी फसल है, तो जितने भी तिलहनी फसलें हैं उसमें आप उर्वरक के रूप में आप जो है कि सल्फर युक्त उर्वरक का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज हमको ये भी कहना है कि अभी अगर आप जब आपके खेत खाली हो जाए तो उसमें मृदा स्वास्थ्य का भी उसमें ध्यान रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने खेत में जैसे कि मक्का लगाए हैं तो मक्का में, मक्का जो है आप देखेंगे कि मक्के की जड़ें जो है ज्यादातर ऊपर ही रहती हैं, और तीसी भी, इसकी भी जड़ें ज्यादातर ऊपर रहती हैं। तो आपने जो भी खाद और उर्वरक का प्रयोग किया होगा उसमें कुछ मात्रा जो है अभी खेत में आपकी बची होगी, ये जो है इसमें प्रयोग आ जाएगा आपके तीसी की फसल में। और एक चीज और है, यदि आप उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार भी आप अपना खेती और जो है उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं। यदि आप जो है अगर अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो इस समय बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। जैसे ही आपकी खेत खाली हो, तो खेत खाली होने के बाद आप अपने खेत की मिट्टी ले लीजिए, मेड़ को छोड़कर, मेड़ से 1 मीटर छोड़कर, छायादार स्थान को छोड़कर, लगभग 6 इंच नीचे की मिट्टी लेकर, 4-5 जगह से, 1 बीघे में 4-5 जगह से लेकर उसको एक साथ मिला के आधा किलो आप सैंपल तैयार कर लीजिए। एक बार उसकी भी आप जांच करा लीजिए कि आपके खेत में कौन सी तत्व की कमी है और कैसा है। और जिन भी फसल को आप जो है अगली फसल आप लेना चाहते हैं, आप उसका उर्वरक रिकमेंडेशन ले लीजिए कि हमको क्या क्या इसमें डालना है, आप उसी के अनुसार आप अपनी खेती करिए आगे।
2: बिल्कुल पन्नालाल भैया, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कर लेने करे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोगन चना का बात करत रही है जा।
0: हाँ, तो चना में जैसे इस समय हम लोग आपसे हम कहते हैं कि चना दो तरीके का आप दाना देखें, एक बड़ा दाना एक छोटा दाना। यदि छोटा दाना चना के आप अपने खेत में बुआई करत हन तो ओकर बीज दर आप अलग रखें, बड़ा दाना के अपने खेत में बुआई करत हन तो ओकर बीज दर आप अलग रखें।
2: जी
0: चने में आप देखिए कि एक समय के बाद चना में कहा कि ये दलहनी फसल हमार। अब हमार जितना भी किसान भाई ये कार्यक्रम के सुनतन, वो लोगन से हम एक बड़ा अपील बा कि फसल चक्र के भी बहुत विशेष ध्यान रखे एक बार। अगर हम लगातार धान गेहूँ करते तो कहीं ना कहीं हमार मिट्टी भी खराब करत हम।
2: जी
0: तो ओकरे बदे आप अपने खेत में धान गेहूँ के बजाय धान सरसों ले सकलन, धान मसूर ले सकलन, धान तीसी ले सकलन, धान चना ले सकलन, धान मटर ले सकलन। ये कहा कि सारा जो है दलहनी फसल इन,
2: जी
0: दलहनी तलहनी फसल ये क्या लोन, दलहनी जितनी फसल इन आप दलहनी फसल वातावरण से नाइट्रोजन एकत्रीकरण करके आप हमारे जमीन के उजौनहब ओकर उर्वरा शक्ति हो के आप बढ़ावल इन।
2: जी
0: अब चना के खेती में आप देखें कि चना के खेती आप जैसे हमारे किसान भाई, एक तो हमारा अनुरोध भाई की लाइन से ही आप अपने चना की बुआई करें। दूसरी बात, चना के खेती में आप देखें कि मैं निपिंग या खुटाई बहुत अनिवार्य होला है। जैसे ही हमारे चना खेत चना बुआई के लगभग 20 से 25 दिन भर, 20 दिन के बाद आप जितना चना खुटाई करें, जितना आपका ब्रांच निकले उतना ज्यादा आपका उत्पादन हुई।
2: जी
0: तीसरा महत्वपूर्ण चीज, एक चीज यह कि चना के एक चना में जो ना आप सिंचाई बिल्कुल बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, हम
2: जी जी
0: बहुत ही अनिवार्य है। आप खेत में देखा था कि बहुत अनिवार्य ही है तभी आपके
2: चना की
0: चना
2: सिंचाई
0: चना
2: करें।
0: के सिंचाई करेंगे, नहीं चना के बिल्कुल ही सिंचाई के बारे में, चना के विषय में नहीं सोचेगा। तीसरी जो हमारे एक महत्वपूर्ण फसल रबी में है, मटर है।
2: जी
0: अब मटर में आप देखें कि मटर के किसान, जो किसान अर्ली मटर हमारे लगा दिए हैं, मतलब अब तक जो लोग किसान मटर लगा दिले हुई हैं या लगाए हुए के बिल्कुल 2-3 दिन तैयारी करते हुए मटर के, वो किसान अपने समय में जाकर ओकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकलन।
2: बिल्कुल
0: और मटर में भी यही चीज है कि मटर के भी खेत में कहा कि आपके ये जितना भी आपके रबी इस फसल है, खासकर दलहनी तिलहनी फसल जो है कि पानी के लेके बड़ा सेंसिटिव होती है,
2: जी जी
0: और आपको ऐसी व्यवस्था या आपको अपने खेत की ऐसी तैयारी करनी है कि पानी आपके खेत में न लगे, नहीं तो इन जितनी फसलें हैं उसमें जो है उकठा बीमारी बहुत तेज

0: से लगती है। आप चाहे आप चना ले लीजिए, चाहे आप मटर ले लीजिए, चाहे मसूर ले लीजिए, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे तो पैच की पैच जो है कि बिल्कुल उखट के एकाएक जो है आपकी फसल सूख जाएगी। उसका प्रमुख कारण है आपका वर्षा या
1: बिल्कुल
0: जो है पानी इकट्ठा होना।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ अश्विनी सिंह साहब। आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आईना और अपने पंच भैया लोगन के इतना बढ़िया जानकारी दिलेन, ऐसे अपन पंच भाई लोग जरूर लाभ उठाई हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो देखें अपन ई रहले अश्विनी सिंह जी जो विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र से रहले, जो उनकी रबी में दलहनी और तिलहनी फसलन के कैसे तैयारी करल जाए, का का बारीकी समझल जाए में।
3: और सबसे बढ़िया बात रहल कि अपन मुनई भैया बीचे में बैठ के सबकर प्रश्न बढ़िया से रखलन और सबके संगे जुड़लन
2: बिल्कुल
3: होने पर,
2: बिल्कुल
3: तो आप लोगन के धन्यवाद दिहल जाई। मगर उसे पहले देखा जानकारी के जब क्रम चलत बा तो एक जानकारी खातिर हमारे पास एक पाती आई है
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लगातार
3: घोरावल।
2: बाजार बाजार भाव आप चर्चा करल चाहते हैं तो अपन इंद्रासन मोर भैया भी हमेशा की तरह पाती अपन शामिल करत रहल है। आज भी उनकर पाती शामिल बा, तो का आज के ताजा घोरावल मंडी के बाजार भाव बा आप बाज दें।
3: देखा सबसे पहले ये जानब जरूरी बा कि बाजार भाव जौन बा उ पसेरी में आलू लाल वाला बा 65 से 70, सफेद आलू 60 से 65, प्याज 180 से 200, लहसुन 550 से 650, मरचा बा हरियर मरचा 200 से 250, भिंडी बा 75 से 80, करेला 200 से 225, लौकी बा 50 से 60, कोहड़ी बा 95 से 100 रुपया पसेरी, सूरन बा 170 से 180, बंडा देखा 70 से 75 बा, बैगन बा 140 से 160, कुनरू बा 100 रुपया से 110 रुपया, बोड़ा बा 160 से 170, परवल बा 400 से 450, धनिया बा 500 से 550, मूली बा 200 से 250, मक्का बा 70 से 75, कच्चा केला देखा आजकल सब्जी में प्रयोग होएला तो 90 रुपया से 100 रुपया पसेरी बा, और देखा फूल गोभी जोन बा इस समय ओकर जैसन फूल गोभी के साइज बा ओकरे हिसाब से 800 से 1400 रुपया प्रति सैकड़ा बा, और नेबुआ इस समय हम लोगन खाती बहुत बढ़िया बा, भाव बढ़िया मिलत बा 350 से 400 रुपया प्रति सैकड़ा बा। ई रहल हो घोरावल मंडी के भाव, तो आप हम लोगन अपने बैठकी के पंचायती के माध्यम से इंद्रासन मौर्या भैया के भी धन्यवाद दिहल जाई काहे कि
2: बिल्कुल दावो धन्यवाद दिहल जाए। और महेंद्र कुमार उनके संगाती लोग भी अपन मन फेर खाती रहो, तो हम तो कहब कि आवा महेंद्र कुमार साथी के मन फेर से अपन पंचायती आगे बढ़े।
3: चल।

0: नंदू भैया देखा मन फेर तो बड़ा जोर के करेला।
1: देखें अपन महेंद्र कुमार सातीर भैया रहल है, उनके धन्यवाद देवे के रहल तो वो अपन जोन बा मन फेर के माध्यम से बहुत कुछ कह गेले गीत गौधही के माध्यम से। लेकिन देखें हम एक बात और शामिल करल चाहब जले भौजी, कि आजकल जोन बा आदमी पहले रहल ना, कि पहले भैया कहूँ हाट बाजार जाए कहूँ भी जाए तो अपन कान्ही में एगो झोला जरूर लटकवले चले। लेकिन अब तो भैया ऐसा जइहे कि पते न लगी कि भैया ये बाजार करे जात हुआ कि भैया कोनो सामान खरीदे जात हुआ कि भैया कहूँ घूमे जात हुआ।
0: ओकर कारण ई बा कि आजकल हर बाजार हर दुकान हर ठेला हर सब्जी वाला रेड़ी जब कोनो बाजार होए वहां जो प्लास्टिक के थैला मिलत बा।
1: बिल्कुल आप कहत हुआ सही। और देखें भौजी एक चीज तो जान लेहल जाए कि प्लास्टिक में जितना भी उपयोग हो रहा बा आजकल, यही के असर बा कि तरह तरह के बीमारियन के लोगन के सामना करे के पड़त बा। चाहे प्लास्टिक में भैया देखें चाय पिए हो गई, प्लास्टिक के जौन भी डब्बा बनल बा ओमे भोजन गरम गरम भी लोग लेवत हुआ खात हुआ पैकिंग करके चल जात हुआ हम, आ कोनो भी सामान बा उहो भी है आप तक प्लास्टिक में सामान जाके घर तक पहुंचत बा, चाहे गर्म होके चाहे भी ठंडा होके चाहे सब्जी होके। और एकर एक कारण और बा कि देखें ये प्लास्टिक जोन बा ना कई तरह के समस्या है। एक तो जहाँ एके रखल जाए वो माटी के लिए भी समस्या बा। दूसर बात कि आप जहाँ सामान खरीदे जाते हैं वहां भी देखें अगर आपके झोला अगर हमेशा रहे तो जौन दुकानदार आज एक प्लास्टिक आपके सब्जी देवे खातिर 5 रुपया के खरीदत बा तो 5 रुपया तो आपसे लेते बा, लेकिन कुछ और बढ़ा के आपसे 7 रुपया 8 रुपया प्लास्टिक के ले लेवत बा।
0: देखा भैया सारी बात अपनी जगह बा मगर ई प्लास्टिक के प्रयोग से पहले तक तो बात समझ में आवता मगर प्रयोग में कैले प्रयोग के बाद एके हम लोगन जहाँ फेंकी ला जा देखा ई गले पचे वाला चीज
1: बिल्कुल वही
0: नाही
1: बात हम
0: बा।
1: पहले देखें
0: और हम
1: कहिए
0: लोगन देखा गाय घरे का आदमी है खेती किसाना वाला आदमी है तो हमन लोगन का ना पूरा पूरा ध्यान अपने माटी पर रहला और जौने माटी में ई कुल चीज जाला समझा इकत्तो गली ना।

तो देखें अपन ये चर्चा के अपन अब समेटल जाए, काहे से कि देखें अपन घड़ी के भी इशारा बा कि अब अपन पंचेती यही समेटल जाए, फिर अगले पंचेती में बात मुलाकात हुई तो चलल जाए। तो सब पंचन के राम राम।

हम आकाशवाणी उपला से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आलिशा चुनाई की आवाज में फिल्म सड़क छाप से।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे जख्मी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
4: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र कुमार से साजिदा बेगम की भेंट वार्ता, फेफड़ों में संक्रमण के कारण, लक्षण और उपचार विषय के बारे में।
5: बहनों, फेफड़ों का संक्रमण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, खासकर हमारे देश में जहां वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी जैसे कारक इस संक्रमण को और ज्यादा बढ़ाते हैं। ये संक्रमण सभी उम्र के लोगों को हो सकता है और कभी कभी तो हल्का सा संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो और ध्यान न दिया जाए तो ये जानलेवा सा हो सकता है। फेफड़ों में संक्रमण को न सिर्फ समझना जरूरी है बल्कि उसके कारण लक्षण को पहचानना भी जरूरी है और साथ ही साथ उपचार तो जरूरी है ही। तो आज हम फेफड़ों में संक्रमण, कारण, लक्षण और उपचार पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार जी, जो कि मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में छाती एवं श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं। तो आपका स्टूडियो में स्वागत है।
6: धन्यवाद मैम।
5: तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि फेफड़ों का संक्रमण क्या है?
6: जब भी हानिकारक सूक्ष्म जीव, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई फंगल इन्फेक्शन हो
5: जी,
6: फेफड़ों पे हमला करते हैं तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है
5: जी,
6: तथा श्वसन संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं।
5: अच्छा।
6: इसी को फेफड़ों का संक्रमण कहते हैं।
5: यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो तो वो सांस लेने में भी परेशानी होती है।
6: जी जी मैम।
5: तो डॉक्टर साहब, अब बताइए कि फेफड़ों में संक्रमण कितनी तरह का होता है?
6: सामान्यतः श्वसन संबंधी बीमारियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण जो नाक, गले, साइनस और वॉइस बॉक्स को प्रभावित करते हैं, जिसको आम भाषा में सर्दी जुकाम भी कहते हैं। आइए जानते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।

0: जाते हैं उसमें सूजन आ जाता है और उसमें तरल पदार्थ भर जाते हैं जिससे खांसी और सांस लेने में अत्यधिक परेशानी होती है। COVID-19 निमोनिया तो उससे पूरा विश्व परिचित है ही, उसके विकराल रूप से। जी जी मैम। तीसरा आ जाइए तो उसमें है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको ये माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। जानकारी के लिए बता दें कि विश्व के प्रत्येक चौथा टीबी का मरीज भारत से है और भारत के प्रत्येक पांचवा टीबी रोगी का संबंध उत्तर प्रदेश से है।
1: जी
0: मैम, यह पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा बीमारी है।
1: जी मैम। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने फेफड़ों का संक्रमण बता दिया, तो ये बताइए कि इसके कारण क्या है, क्यों होता है?
0: इसके मुख्यतः कारण वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या अन्य कारण हो सकते हैं। आइए वायरल इन्फेक्शन में बात करें तो उसमें COVID-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, RSV कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस कहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मुख्यतः माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लेब्सिला निमोनिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऐसे न जाने बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। फंगल इन्फेक्शन में मुख्यतः स्पर्जिलस या कैंडिड इन्फेक्शन होते हैं। और अन्य कारक में बात करें तो उसमें है प्रदूषण हो सकता है, धूम्रपान हो गया, या जिनका इम्यूनिटी कम होता है, जिसका प्रतिरक्षा कमजोर प्रतिरक्षा वाले, उनमें फेफड़ों का संक्रमण जल्दी होता है।
1: हाँ, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ या तो उन्हें फौरन सर्दी जुकाम आ जाता है या वायरल बुखार शुरू हो जाता है, तो ये सब कारण उनके कमजोर इम्यूनिटी वालों को ही होता है।
0: जी मैम। तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा जो छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनमें सर्दी जुकाम ज्यादा दिन तक रहता है, और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं या क्या बोलते हैं ना के बराबर उनको प्रभावित कर पाता है। जी मैम।
1: तो डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि फेफड़ों में पानी भर गया, तो ये क्या है और क्यों होता है?
0: अब इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम सब लोग कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल मतलब होता है फेफड़ा और इफ्यूजन मतलब पानी का भर जाना। इसके मुख्यतः कारण टीबी हो सकता है, मुख्य कारण इसमें टीबी और कैंसर होता है।
1: अच्छा।
0: और अन्य कारण में बात करें, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो या लीवर की बीमारी हो, तो उसमें भी फेफड़ों में पानी भर जाता है।
1: अच्छा।
0: जी मैम।
1: हाँ, अक्सर सुनाई देता है उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो ये क्यों होता है?
0: ये फेफड़ों के संक्रमण से ही होता है मैम। जी मैम। उसमें अब इसी कैंसर हो गया, टीबी हो गया, और ये जो जितने सारी अभी जो हमने बीमारी गिनाए उसमें ये हो सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, फेफड़ों के संक्रमण जब होता है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे?
0: उसमें मुख्यतः यही लक्षण होता है, खांसी आता है मरीज को, बलगम आता है और सांस फूलता है और सीने में दर्द या जकड़न होती है। मरीज बोलता है कि घरघराहट की आवाज आ रही है।
1: जी
0: हाँ। या बुखार आता है, भूख न लगना या कमजोरी होना।
1: अच्छा, ये सारे लक्षण हैं।
0: जी
1: तो इनका उपचार किस तरह से होता है?
0: मैम, यह निर्भर करता है कि फेफड़ों में संक्रमण किस प्रकार से हुआ है, किससे हुआ है मैम। अगर निमोनिया है तो उसमें सिंपल एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है। अगर वहीं पे टीबी है तो उसमें ATT दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी बोलते हैं। हाँ, ये मुख्यतः जो ATT है, वही अगर जो छोटी टीबी है तो उसको 6 महीने का कोर्स दिया जाता है, अगर जो बड़ी टीबी है तो उसमें 9 महीने का भी कोर्स है, 12 महीने का भी कोर्स है, 18 महीने का भी कोर्स है।
1: जी तो इस तरह से उपचार हो सकता है।
0: जी मैम। आपके माध्यम से सभी श्रोता साथियों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने टीबी का जांच और इलाज मुफ्त में कर रखा है। साथ ही अच्छे पोषण के लिए, उनके अच्छे खान पान के लिए ₹1,000 इंसेंटिव की तरह वो ये सहायता देती है, और ये सीधे मरीज के अकाउंट में जाता है।
1: जी
0: मैम।
1: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब जो टीबी के रोगी हैं उनकी जांच, दवाएं, ये सब फ्री में होता है, इलाज फ्री में होता है, साथ ही साथ अच्छे खान पान के लिए पैसे भी मिलते हैं।
0: जी मैम। तो इलाज भी कराइए और साथ में क्या बोलते हैं, पुरस्कार स्वरूप आप ₹1,000 महीने भी ले जाइए।
1: हाँ, तो वो अच्छे खान पान के लिए होगा। तो उनका उद्देश्य यही है कि सारे लोग टीबी से मुक्त हो जाएं।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे आसपास जो क्रेशर उद्योग हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल गर्द होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग काम भी करते हैं, तो उन्हें श्वसन संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी मैम। सोनभद्र तो उद्योग नगरी कहलाता ही है मैम।
1: जी।
0: तो यहाँ पे जितने श्रमिक भाई बंधु हैं उनको सांस संबंधित खतरे ज्यादा हैं।

0: जिनको
1: जी
0: यूं कहें कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज उनमें होने के संभावना ज्यादा हैं।
1: जी जी।
0: तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में हो सकता है उनको ऑक्यूपेशनल एज अस्थमा हो, ठीक है, नाम ही बता रहा है ऑक्यूपेशनल, मतलब उसके रोजगार संबंधित उसको अस्थमा हो गया
1: जी,
0: है
1: जी।
0: जब कोई मरीज लंबे समय से इसमें ये क्रेशर फैक्ट्री में काम
1: हाँ,
0: करता
1: हाँ,
0: है
1: जी।
0: तो उसमें सांस संबंधित दिक्कत होती है, जैसे सीने में जकड़न होना, घरघराहट की आवाज आना, सांस फूलना उनके प्रमुख लक्षण है
1: जी, क्योंकि उधर धूल गर्द ही बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोगों को तो क्रॉस करने में ही हम लोग नाक ढक लेते हैं, तो सोचिए जो वहाँ पे काम करते हैं उनका क्या हाल होता होगा।
0: जी जी मैम। और दूसरा है सिलिको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं मैम, नाम ही है, इसमें दो शब्द हैं, सिलिकोसिस प्लस ट्यूबरक्लोसिस। सिलिकोसिस मतलब उसमें जो क्रेशर फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं तो उसमें सिलिका नामक एक पदार्थ होता है जो कि वहाँ फेफड़ों में जम जाता है, तो इससे क्या बोलते हैं टीबी का संक्रमण का खतरा और अधिक हो जाता है मैम। और तीसरा है आईएलडी कहें या इंटरस्टीशियल लंग डिजीज, तो इसमें क्या बोलते हैं फेफड़ों की सूखने की बीमारी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो इसमें सूखी खांसी आ सकता है और सांस फूलने के और वजन वजन कम हो सकता है।
1: जी।
0: और चौथा एक और कह सकते हैं कि इसमें कैंसर का भी खतरा होता है।
1: अच्छा,
0: जी मैम, इसमें मुख्यतः क्या बोलते हैं मीजोथेलियोमा, ये मुख्य उसमें कैंसर है मैम।
1: अच्छा,
0: यस
1: मतलब यह धूल गर्द से कैंसर भी हो
0: हाँ
1: सकता
0: जी
1: है।
0: जी मैम, कैंसर भी हो सकता है मैम।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, हम सभी को फेफड़ों के संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसी सावधानियां रखनी चाहिए?
0: मैम, बीमारी कोई सा भी हो तो
1: जी
0: सबसे पहला यही है उससे लड़ने के लिए आपका स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं,
1: जी
0: पोषक आहार लें, नियमित व्यायाम और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें।
1: जी
0: और सांस संबंधित बीमारियों के लिए मैं मुख्यतः बताना चाहूंगा कि धूम्रपान से बचें,
1: जी
0: और ना धूम्रपान करें और ना करने दें।
1: जी,
0: हाँ,
1: क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई सिगरेट या बीड़ी पीता है तो उसका धुआं आसपास पूरा फैल जाता है।
0: जी जी मैम, जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई भी स्मोकर स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, तो वो 40% अपना लेता है और 60% पूरे आस पड़ोस जितने भी वहां पे है पूरे वातावरण में फैला देता है।
2: फेफड़ों में संक्रमण के कारण, लक्षण और उपचार, इस बारे में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर नागेंद्र कुमार से साजिदा बेगम की ये भेंट वार्ता। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा समाधान पर केंद्रित है वर्तमान सरकार की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण, कहा जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। इस मौके पर आज उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल किया गया अनुभव उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भारत के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का समय है। उन्होंने कहा कि समाधान पर केंद्रित दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्ष में उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक समर्थ और सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस नए भारत का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। और इसलिए आज हर भारतवासी के लिए, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए गौरव का क्षण है।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में गुजरात के वडनगर से काशी तक निकाली गई बाइक सेवा यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, नेतृत्व, नीतियों और शासन मॉडल पर आधारित पुस्तकों का एक मंच पर लाने वाले नमो बुक फेस्ट जन वी का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आयोजित सेवा ज्योति कार्यक्रम यात्रा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में अभियान के अंतर्गत सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5

0: सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
1: इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रुकने नहीं दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था जहां 2%, 1.5% और 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व में इतना बड़ा संकट पैदा होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 7.4% की दर से बढ़ रही है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में सेवा ज्योति कलश यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
2: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिली है।
3: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली।
2: यूपीएसटीसी के सीईओ मनोज सिंह ने बताया कि प्रगति की बैठकों के कारण जवाबदेही तय होती है।
4: पीएम प्रगति जो मीटिंग होती है उसमें प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं और एक ब्रीफ होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि इसे 4 साल में पूरा होना था। तो ये जब चीजें सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट में आती हैं तो लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है। मीटिंग होने के पहले 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है।
2: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से श्री आबे को विनम्र श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 में भारत जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे और ये गलियारा उस अमृत पर्व की पहली भेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की युवा ऊर्जा दोनों देशों के विकास को गति देगी।
5: आज लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। अब भारत जापान की साझेदारी भविष्य के क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच चुकी। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट, जापान के पास अनुभव है और भारत के पास युवा ऊर्जा।
0: कार्यक्रम में जापान की पूर्व प्रथम महिला अकी आबे ने कहा कि काशी में आबे मेमोरियल का निर्माण इसलिए अहम है क्योंकि शिंजो आबे के मन में वाराणसी आने की प्रबल इच्छा थी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 सदस्यीय रणजी टीम का ऐलान कर दिया है। आर्यन जोयल की कप्तानी में टीम में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ लखनऊ के जीशान अंसारी, करण शर्मा, प्रशांत वीर, यश दयाल और कार्तिक त्यागी जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जगह दी गई है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में आज तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ जगहों पर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा समाधान पर केंद्रित है वर्तमान सरकार की नीति।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण। कहा, जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्री राकेश चंद्रा से की गई अतीश कुमार श्रीवास्तव की बातचीत, विषय शांति एक्ट ऊर्जा पर आधारित।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत। मैं हूं अतीश श्रीवास्तव। श्रोताओं, हमारे देश में आवश्यकता है ऊर्जा और ऊर्जा संवर्धन के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, तो अभी दिसंबर 2025 में एक शांति एक्ट बनाया गया है, तो ये क्या है, कैसे काम करेगा या क्या गाइडलाइंस है इसके पास, इस विषय पे अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है डॉक्टर राकेश चंद्रा को। आप पूर्व आईएएस भी हैं और पीजी से जुड़े हैं और इस पर उन्होंने डॉक्टरेट भी की है। डॉक्टर साहब का स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि ऊर्जा की क्या जरूरत है देश में और इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी?
3: सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा देश इस समय विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरा प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे देश के नीति निर्माताओं का कि बहुत जल्दी हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं। पर इसके लिए जो आवश्यक है ये कि अगर हम अपने उद्योगों को जितना बढ़ा सकें, हमारे उद्योग जगत को इतनी ऊर्जा मिल सके, क्योंकि उद्योग चलते हैं ऊर्जा पर। और इसके अलावा अभी कंप्यूटर्स पे आजकल बहुत काम हो रहा है, कंप्यूटरों को चलाने के लिए हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए अभी जो डाटा इकट्ठा होता है डाटा सेंटर्स के लिए, उसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता। वर्तमान में जितनी ऊर्जा हमको मिल रही है वो बहुत कम है। प्रति वर्ष 3 गुना ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है मांग में, और अभी तक हम लोग जो हैं वो अपनी ऊर्जा का 70% केवल हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हम दोबारा नवीकरण नहीं कर सकते या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसको। 70% ऊर्जा जो हमको मिल रही है, जो हम फॉसिल फ्यूल जैसे कहते हैं, जो जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा है, ये धीरे धीरे अब सब स्रोत इसके समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। साथ में जो तापीय ऊर्जा है जो कोयले से मिलती है, वो उससे पर्यावरण संकट बहुत तगड़ा आ रहा है। जो ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, जिससे ओजोन होल की समस्या आ रही है, और ये जो जलवायु संकट है ये बहुत तगड़ा और गहराता जा रहा है। कोयले को तो अब हम धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पर इसका विकल्प क्या है? क्योंकि पानी जो बड़ा स्रोत है वो जल विद्युत है, जिसे हाइड्रल पावर कहते हैं। इसमें हर साल मौसम जो है वो बदलता रहता है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, नदियां बहती नहीं है ठीक से, तो ये भी इनमें भी दिक्कत है। और साथ में अनेक प्रकार के पर्यावरण संकट, जैसे आपने उत्तरकाशी में देखा और जगह देखा, जहां ज्यादा ये मनाए गए हैं वहां पे भूस्खलन या चीजें भी इससे होती हैं।
2: डॉक्टर साहब, सोलर एनर्जी भी तो हो सकता है इसका एक निदान?
3: जी हाँ, पिछले 2-3 सालों में ये भी हमारे प्रधानमंत्री की पहल थी, जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और पिछले 3-4 वर्षों में सोलर एनर्जी पे बहुत काम हुआ है, और बहुत उत्तर प्रदेश में तो खैर बहुत ही अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये इसके संग कुछ अभी प्रारंभिक दिक्कतें हैं, जैसे कि इसको जो बनती है, इस ऊर्जा को हम कहाँ स्टोर करें, इस पर भी बहुत दिक्कत।

0: है भी, इसलिए अभी वो इतनी मात्रा में ना तो बन पा रही है और ना हम संचित कर पा रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम आ जाते हैं शांति एक्ट के बारे में, क्या है ये?
0: तो इसीलिए ये तय किया गया कि अब हम नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी पे हम अपना फोकस लाएं, क्योंकि यही एक ऊर्जा है जो सबसे साफ सुथरी ऊर्जा है, और दूसरा कम ईंधन से बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊर्जा हमको मिलती है, और तीसरा ये जो हमारा 2070 तक एक लक्ष्य है भारत सरकार का कि नेट जीरो एमिशन, यानी कि हम जो भी आसमान में हम कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ेंगे धुआं या विषाक्त पदार्थ जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे उसको जलवायु को दूषित करे, ये तीनों चीजें इससे पूरी होती हैं।
1: क्या कारण है कि इसका नाम शांति एक्ट रखा गया?
0: शांति जो है वो एक संक्षिप्त नाम है, इसका पूरा नाम है द सस्टेनेबल, इसे एस लिया है, हार्नेसिंग इसे एच लिया है, एंड एडवांसमेंट ये ए लिया है, ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी NE, और फिर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025
1: वाह, क्या बात
0: जी।
1: है।
0: तो ये शांति एक्ट बनाया है, इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम ऊर्जा की जो कमी है, क्योंकि हर साल 3 गुना ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, और इसे पूरा करने के लिए हमारे पास अब केवल यही विकल्प बचा है नाभिकीय ऊर्जा को हम अधिक से अधिक प्रमोट करें। तो ये एक्ट दिसंबर 2025 में हमारी संसद द्वारा पारित हुआ है, और इसका उद्देश्य जो है वो पहली बार इसमें हमने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है कि वो भी इसमें अपनी हिस्सेदारी कर सके। दूसरा यह है कि एक बड़ी दिक्कत ये आती थी कि जैसे हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन विदेशों में, जैसे चेर्नोबिल रशिया में 1986 में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, और अभी 2011 में जापान में हुई, फुकुशिमा में हुई, ऐसे 3 माइल्स आईलैंड 1979 अमेरिका पेंसिल्वेनिया में हुई, इसमें क्या हुआ, इससे जो विकिरण निकलता है उससे कई लोग मारे गए, और वहां पर कई सालों तक बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें रही। तो इस विकिरण के डर से हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की ओर कम जाते थे, लेकिन अब आज के समय में भी अगर तुलना करें तो हमारे यहाँ 70% ऊर्जा वो जहाँ कोयले और तेल इन सबसे मिल रही है, वहीं फ्रांस में 70% ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा से इस्तेमाल हो रहा है।
1: जी
0: इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें सेफ्टी का और उनकी सुरक्षा का मानदंड जो है उसको पालन करें, तो ये बहुत अच्छी जो है हमको एक ऊर्जा मिल रही है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण वातावरण का नहीं है।
1: जैसा भी उद्देश्य हमारे भारत सरकार का, तो हम इस दिशा में अभी तक किस स्तर तक पहुंचे हैं?
0: सन 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, और महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा इसके जनक थे। तो उस समय 2-4 साल बाद एक बॉम्बे में, एक ट्रॉम्बे जगह, वहां पर पहला रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा वो स्थापित हुआ, और तब से लेकर आज तक हमारे पास 30 एटॉमिक रिएक्टर हम बना चुके हैं, 22 तो हमारे काम कर रहे हैं और 8 निर्माणाधीन हैं। तो इस दिशा में इसमें काफी काम हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो मूल तत्व तो है वो है यूरेनियम, जो हमारे देश में नहीं होता है, ये हमको पूरा विदेशों से लेना पड़ता है, और हमको कभी पूरी मात्रा में नहीं मिलता, बहुत कम कम मात्रा में मिलता है। हमारे देश में ऐसे ही एक तत्व तो है थोरियम। थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। हमने एक तकनीक विकसित की है कि हम थोरियम को यूरेनियम की जगह रखकर एटॉमिक रिएक्टर्स को चला सकते हैं।
1: जी
0: तो अब इसके 3 स्टेप थे। जो पहला हमने रिएक्टर बनाए वो थे हैवी वाटर रिएक्टर, जो यूरेनियम पे ही थे। उसके बाद हमने बनाया जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें यूरेनियम के साथ प्लूटोनियम मिलाया, और अब हम जो तीसरी स्टेज पर आ रहे हैं जिस कुछ 5-6 रिएक्टर्स मिल जाएंगे, तो हम इस दिशा में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे,
1: थोरियम में हम आत्मनिर्भर हैं।
0: हैं और हमको ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और साथ में ऊर्जा की जो इतनी बड़ी कमी है वो तब हमको आसानी से पूरी हो सकेगी, हम शायद तीसरी क्या और आगे भी अर्थव्यवस्था
1: वाह,
0: बढ़
1: क्या
0: पाएंगे।
1: बात।
0: इस संदर्भ में एक बात और आपको बतानी थी कि इस शांति एक्ट की खास बात थी, मैंने बताया कि प्राइवेट लोगों को भी इसमें इन्होंने अलाउ किया है कि आप भी अपना आइए बिजली बनाइए, लेकिन कंट्रोल जो है ना, जैसे सुरक्षा का कंट्रोल है, या आपने जो मानदंड सही अपनाए कि नहीं अपनाए हैं, यहाँ तक कि एक एक ग्राम आपने जो थोरियम है यूरेनियम है उसको आप कैसे इस्तेमाल करें, इस पर पूरी नजर भारत सरकार रखेगी। एटॉमिक एनर्जी जो कंट्रोलर्स हैं वो रखेंगे, रेगुलेटरी बोर्ड वो AERB देगी, आपको सेफ्टी का लाइसेंस देगी, यानी कि सुरक्षा का पूरा
1: पूरा ध्यान रखा गया
0: जो है वो भारत सरकार रखेगी। हाँ, बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। दूसरी बात यह है कि एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जब कभी दुर्घटना हो जाती थी तो लोगों को बड़ा कोशिश, कोर्ट भी जाते थे कि हमको मुआवजा मिले, और भटकते थे। इसमें यह सीधा है कि अगर होगी तो पहली जिम्मेदारी जो जो चला रहा है ऑपरेटर उसकी होगी, उसे एक निश्चित तिथि तक सारा मुआवजा देना होगा, और अगर एक मुआवजा की एक निर्धारित राशि से ऊपर और जा रहा है मुआवजा, तो भारत सरकार उसका वो करेगी, इसमें किसी को भी परेशान होना नहीं पड़ेगा, ये इसकी बहुत बड़ी अच्छाई है।
1: जैसा कि भोपाल गैस कांड हुआ था,
0: भोपाल में हुआ ना, उसे

0: अब तक उसका केस चल रहा है,
1: अब तक चल रहे हैं उसके, और वो भी जिनको मिला है वो भी अधूरा आधा अधूरा मिला है
0: जी। जी डॉक्टर साहब ने बताए थे कि तीन बिंदु हैं, तो तीसरा बिंदु के बारे में।
1: तीसरा बिंदु ये है कि जैसे हमारा लक्ष्य ये है कि हमको थोरियम पे आधारित रिएक्टर बनाने हैं और उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो दो स्टेजेस हमने पार कर ली हैं। पहला तो जो हमने हैवी वाटर यानी यूरेनियम के रिएक्टर्स बनाए, दूसरा हमने जो यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम, उसमें भी पहला रिएक्टर अभी पिछले महीने फंक्शनल हो गया है, जैसे कहते हैं क्रिटिकलिटी उसने प्राप्त कर ली है, इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते थे। अब इसके बाद तीसरी स्टेज जो थोरियम बेस है ये भी कुछ 5-6 सालों में हो जाएगी, पर इसके साथ साथ हमने एक और वो चीज सोची है जो स्मॉल रिएक्टर्स, तो स्मॉल रिएक्टर्स क्या होंगे कि 220 मेगावाट के बिजली उनमें पैदा होगी। ये इसी प्रकार से होंगे कि जैसे आप किसी इंडस्ट्री के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जैसे कैप्टिव ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो इंडस्ट्री के लिए ही होता है, पूरी बिजली उसी इंडस्ट्री को सप्लाई होती है,
0: तो एक इंडिविजुअल यूनिट,
1: इंडिविजुअल यूनिट के लिए। तो 220 मेगावाट के जो ये स्मॉल ट्रांसफार्मर्स हैं, ये हम इसकी हम तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये बन जाएंगे, तो हम इंडस्ट्रीज को भी और उनकी मांग के अनुसार हम उनको उनके बाहर इंडस्ट्री के बाहर एक लगा देंगे, नाभिकीय ऊर्जा से जो पूरी बिजली उनको मिलेगी।
0: तो उसका नियंत्रण थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार?
1: जी नहीं, उसका नियंत्रण वही है कि वो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड साथ में उसका भारत सरकार की और कुछ एजेंसीज हैं, मंत्रालय हैं, सब मिनट मिनट की इस पे मॉनिटरिंग होगी। और अभी भी हमारे विद्युत बोर्ड होता है उसी प्रकार से जो AERB है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये इसका पूरा पर्यवेक्षण करेगा और इसका हर चीज का वो उसके लिए उत्तरदायी होगा।
0: तो इसमें क्या संभावना है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स है क्या ऐसा कुछ क्रिएट करें कि जिससे कि नुकसान हो?
1: शांति एक्ट में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें 1 ग्राम यूरेनियम या 1 ग्राम प्लूटोनियम या 1 ग्राम थोरियम का भी दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सीधे सर्विलांस भारत सरकार कर रही है, किसी किस्म की संभावना नहीं है कि वो उसको दुरुपयोग कर सके। साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, कोई दुरुपयोग अगर करना भी चाहेगा तो उसका जो विकिरण इतना तेज फैलेगा तो उसका तत्काल प्रभाव जो होगा आसपास के रहने वालों पे होगा।
0: अच्छा, वहीं उसी यूनिट पे हो जाएगा,
1: उसी यूनिट के आसपास जितने लोग रह रहे हैं, तो ये खतरा कोई भी ऑपरेटर मोल नहीं लेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, तो वो खतरा तो कभी नहीं होगा। हाँ, ये है कि वो जैसे जो उनका संयंत्र है उसकी समय समय पर उसकी उसकी देखरेख होती रहे, अच्छी देखभाल होती रहे, और जो मानदंड बने हैं भारत सरकार के उनका पालन होता रहे, सप्लाई की चेन डिस्टर्ब ना होने पाए, ये सब बस देखते रहना है। और इसके लिए बोर्ड है और साथ में कुछ अधिकारी और भी रहेंगे इसको देखने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें किसी किस्म की दिक्कत है, क्योंकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है फ्रांस का, जहां 70% ऊर्जा जो है वो नाभिकीय ऊर्जा आज भी हो रही है।
0: डॉक्टर चंद्रा, आपने इतनी बातें हमें बताई, लेकिन अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?
1: हाँ, ये मैं सभी श्रोताओं को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 जगहों का चयन किया है प्रदेश भर में, जहाँ पे हम इसी प्रकार के संयंत्र लगाएंगे नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है कि ये हम इसको लाएंगे, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है कि ऊर्जा हमारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए 6 स्थानों का चयन कर लिया गया है, जहाँ शीघ्र ही जो है शुरू हो जाएगा काम।
0: तो डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि हम ऊर्जा में अगर आत्मनिर्भर हो गए तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और जो उद्देश्य है हमारे प्रधानमंत्री का कि हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बने, आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेंगे। इस स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कानून की बात कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शांति एक्ट ऊर्जा पर आधारित, इस विषय पर डॉक्टर राकेश चंद्रा से की गई अतीश कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: हम आकाशवाणी उभरे से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। आइए सुनते हैं सबरस।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज रविंद्र जैन की है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं आरती मुखर्जी की आवाज में मनोकामना फिल्म के इस गाने को।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं वशीर बद्र की ये रचना, आवाज आशा भोसले की है।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। निधा फासले की ये रचना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर की गाई इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये कार्यक्रम एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 से।

0: सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्ध एमटीपीसी रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: उषा उत्थम की आवाज में ये है लॉकेट फिल्म का गाना।

बपिलहरे की आवाज में आप सुन रहे थे वारदात फिल्म के इस गाने को, और इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में गुलजार की ये रचना।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद रात 9 बजे से अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष

0: के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए

0: मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: It's so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions.
7: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है. साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं.
6: एंड द बैंक रेट टू 5.75%.
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है. आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है. भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया. इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और ईएफटीए के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया. वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की गई है. एक रिपोर्ट.
8: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है. उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया. दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है. उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है. ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है. समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे. ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे. और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा. उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की. भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की. कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है. रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया. प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे. स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की है. और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक. और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
9: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with News at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientists duo Henri B. Caron and Kenzo Zhuai win 2026 Nobel Prize in Chemistry for solving molecular asymmetry mystery. And Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel to lead India as flag bearers at Asian Para Games beginning in Japan later this month. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said, India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Mr. Modi said the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
10: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhaar raha hai. Samasya sabki hai, to samadhan bhi sabke liye hona chahiye. Aur isliye humne sushasan ko saturation se joda. Saturation yani har labharthi jude, koi patra chute nahi, koi hakdar piche rahe nahi. और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके.
9: The Prime Minister said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said earlier, efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. Mr. Modi said such transformation is possible when the intent is clear and policies are well defined.
10: Desh ne mujhe bahut kuch diya hai, isliye desh ke liye mera daitva bhi sabse adhik hai. और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है. ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है. मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है.
9: Home Minister Amit Shah hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day, addressing the Vikasit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today. He stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of Naxalism and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. He mentioned that as part of this campaign, torchlight processions are being organized, during which young people will take out a Seva Jyoti Yatra and install the torch at the designated crossing. Mr. Shah urged everyone to join the Yatra in as large numbers as possible.
11: Whenever the history of India is written, these 25 years will be written in golden letters. These 25 years have seen freedom from poverty, a secure India, abrogation of Article 370, the end of Naxalism, construction of the Ram Janmabhoomi and Kashi Vishwanath temples, infrastructure being taken to unprecedented levels, and 25 crore poor people being lifted above the poverty line.
12: And 25 crore garibon ko garibi rekha se upar uthana.
9: Leaders from Japan, Bhutan, Nigeria, the Philippines, Belgium, Nepal, Botswana and Dominica have congratulated Mr. Modi on achieving this milestone. Prime Minister Modi's 25 years in public service has been a journey defined by the mantra of Jan Seva, Siddesh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like the International Solar Alliance.
13: India and France had jointly launched the International Solar Alliance in November 2015 during the COP21 Climate Conference. The global intergovernmental organization is dedicated to accelerating the deployment of solar energy as a pathway to energy access, energy security, and sustainable development. ISA was created to mobilize collective action against climate change through the widespread adoption of solar energy solutions. Today, ISA has evolved into a global platform for international cooperation on solar energy, with 129 countries currently registered as members. Co-chairing the launch of International Solar Alliance during COP21 in Paris, Prime Minister Narendra Modi said that the alliance focuses on making solar energy cheap, reliable and widely accessible by driving research and development, streamlining regulations, building infrastructure and unlocking new financing models to draw investment.
4: This alliance is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
13: Talking to Akashvani News, Director General of International Solar Alliance, Ashish Khanna said that ISA signifies the strength of the vision of Prime Minister Narendra Modi and showcases India's ability to the Global South, bringing together countries for cleaner energy, livelihood and energy security.
5: When I look back at the creation of International Solar Alliance, I see the vision of Prime Minister Narendra Modi far ahead of its time. Way back in 2018, he set out an ambition to enable 1,000 gigawatt of solar when India had hardly done 10 to 20 gigawatts. Come today, the world has now seen 3,000 gigawatts of solar, reflecting how true his vision was.
13: The alliance represents a transformative movement towards sustainable energy future. With India leading this initiative, ISA not only aims to enhance energy access and security, but focuses to significantly reduce carbon emissions globally. With Priya Mondal, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
9: This is Akashvani giving you the news.
14: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
9: Welcome back. You're with us on the news at 9. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in the last one or two days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such attacks threaten commercial shipping and endanger the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royad Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were three Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them was injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo-flagged ship, Alpha Watanalso, came under attack yesterday. Expanding on India's broader diplomatic efforts to address the root cause of regional volatility, Mr. Jaiswal emphasized New Delhi's ongoing communication channels with both Moscow and Kiev.
2: On the issue of Ukraine conflict, India has consistently maintained that dialogue and diplomacy are the way forward. You're aware of our position. Prime Minister on multiple occasions has expressed that this is not an era of war and no solution lies in the battlefield. In Bishkek, as you would recollect, when he met President Putin, he did note and underline that time has come for endless war to now give way to end of war.
9: Meanwhile, Russia has expressed gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow appreciates New Delhi's willingness to offer ideas aimed at finding a peaceful solution to the crisis. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India, RBI, today raised the key benchmark policy rate by 25.

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे पापी फिल्म का ये गीत। और अब सुनिए कार्यक्रम के आखिर में आजाद फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

आजाद फिल्म के इस गाने के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम VBG राम जी भी कहते हैं, वो ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा होने पर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है और ये व्यवस्था पहले की मनरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए, इस योजना के बारे में समझने के लिए, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ में हैं आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर

0: करना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VVGRAMJI भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
1: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत GRAMJI, यह एक ऐतिहासिक एक्ट जो बना हुआ है वह पूरे देश में लागू हो चुका है। एक ही दिन में भारत देश के सारे ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत GRAMJI के सारे प्रावधान जो है वो लागू हो चुके हैं। उसके तहत अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 36 करोड़ से भी ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसे कि हम परसेंटेज कहते हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा वर्कसाइट्स पर जो है विकसित भारत GRAMJI के काम चल रहे हैं और 2,34,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये जो काम है वो किए जा रहे हैं। 2.99 ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रोजगार मांगा, उनको 15 दिन के अंदर अंदर यह रोजगार उपलब्ध किया गया है और लोगों की रोजगार की और आजीविका की कई सारी ये जो डिमांड्स है उनको तभी के तभी फुलफिल किया गया है। तो एक तरीके से 1 जुलाई से विकसित भारत GRAMJI का राष्ट्रव्यापी जो शुभारंभ हुआ है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई और बहुत ही स्मूथली विकसित भारत GRAMJI लागू हो चुका है और सारे ग्रामीण उसका बहुत सही तरीके से 125 दिन की जो बढ़ी हुई रोजगार की गारंटी है उसका यूज कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, अब उसमें आगे जाते जाते कई सारे पहलू जो है हम लगा रहे हैं, जैसे कि नए कामों की जो सूची अभी अभी भारत सरकार ने नोटिफाई की।
0: रोहिणी जी, इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि केवल रोजगार ही उपलब्ध न कराया जाए बल्कि कई अन्य काम भी हो, जैसे कि गांवों में जल संरक्षण हो, जल सुरक्षा हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, आजीविका से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जलवायु या फिर अत्यधिक मौसम से बचाव जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाए। इस दिशा में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक जो सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में बताएं।
1: विकसित भारत GRAMJI का अगर आप नाम ही देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मतलब यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम जो है वो केवल रोजगार की बात नहीं करता है, वो रोजगार के ऊपर जाकर आजीविका की बात करता है, जिससे कि लोगों को केवल मजदूरी, केवल रोजगार ना मिले परंतु स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध हो। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो अनुमेय कामों की सूची है। अनुमेय कामों की सूची में जैसे आपने कहा टोटल 375 काम जो है वो अनुमेय माने गए हैं विकसित भारत GRAMJI में, जिसकी सूची जारी हुई। इन 375 कामों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी गई है तो वह है जल संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जल है तो कल है, कैच द रेन, ऐसे कई सारे कैंपेन्स जो है भारत सरकार चलाता है जिससे कि हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए, हमारे शहरी विभागों के लिए पानी की कमी ना रहे, वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। इंडियाज वाटर विजन 2047 भी यही कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले वाटर सिक्योर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जल संधारण के जो कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आप देख सकते हैं कि 128 ऐसे काम है 375 में जो कि जल संधारण के कार्य है, वाटर सिक्योरिटी के कार्य है, और उसके बाद जो है ग्रामीण अवसंरचना के कार्य है, और जो 111 ऐसे काम है जो ग्रामीण अवसंरचना के हैं, जिसमें कि सारी बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं ग्रामीण विभागों की, रोड हो गए, पुल पुलिया हो गया, खेत सड़क हो गए, किसी स्कूल की लैबोरेटरी की बिल्डिंग हो या क्लासरूम बिल्डिंग हो या टॉयलेट्स हो या फिर आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हो, जो भी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ग्रामीण विभागों में है वह सारा 111 कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में आता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी ऐड की गई है जिसे कि हम आजीविका मूलक गतिविधियां कहेंगे, जिसमें कि 98 काम उसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना जब करना पड़ता है तो उससे निपटने के लिए भी 38 ऐसे काम है जो कि इसमें ऐड किए गए हैं।
0: रोहिणी जी, अभी आपने 128 कार्यों का जिक्र किया जल सुरक्षा के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की जो स्थिति है थोड़ी सी ऐसी नजर आती है कि वहां पर काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, साथ ही कृषि की जरूरतें भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहती है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि को ज्यादा ज्यादा लाभ मिल जाए। तो इनका जो निर्धारण किया गया है 128 कार्यों का, इनके पीछे क्या यही सोच रही है सरकार, कुछ और भी प्लान कर रही है जिससे लोगों को और भी लाभ मिलेगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम पानी की बात करते हैं तो उसके सेंट्रल स्थान पे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो किसान है उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और इसलिए किसानी और जलवायु और जल सुरक्षा ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर यह बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है और किसानी के साथ-साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे लचीलापन कहते हैं वो करने के लिए या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात इस वर्ष अल निनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली अफेक्ट होने की संभावना

0: ना है कुछ एडवर्सली अफेक्ट हो भी गए हैं तो ड्रॉट प्रूफिंग की जो बात है क्लाइमेट रेजिलियंस की जो बात है यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है सोच में रहा है और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई है।
1: आपने ये जिक्र किया था कि मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों का प्रावधान किया गया है तो इसमें सौर स्ट्रीट लाइट की बात है स्वास्थ्य केंद्रों की बात है पुस्तकालय स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाओं या फिर अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है आपको लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे।
0: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गाँव के लोगों में है और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए। ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना यह एक जरूरत बन चुकी है क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारे बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी। हमारे किसान हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका जब प्रसंस्करण होता है उसका जब प्रोसेसिंग होता है तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो इसमें ऐड किए हैं और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के।
0: विकसित भारत जी राम जी जब हम कहते हैं तो उसकी शुरुआत में ही विकसित भारत आता है। ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी निखिल जी आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती। इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव्स में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है और इसीलिए जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से नियोजन किया जाए इन कामों का और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गांव की कल्पना की गई है और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है जिन प्लान्स में ये 375 टाइप के काम भी आएंगे।
1: रोहिणी जी आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग 1.1% था अभी बढ़कर वो 26% हो गया तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है।
0: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह केवल रोजगार देने वाला प्रोग्राम नहीं है, यह रोजगार के आगे जाके आजीविका की बात करता है और इसीलिए पहले के प्रोग्राम में एमजी नरेगा में लाइवलीहुड के बारे में बात ही नहीं की गई थी, अगर थी तो भी केवल एक या दो बहुत ही कम 1% काम जो थे वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज में आते थे। विकसित भारत जी राम जी वही परसेंटेज जो है अब वो 26% हो गया है। इससे पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित भारत जी राम जी में इन अनुमेय कामों को शामिल किया गया है। मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि ये काम केवल नंबर्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारे किसान जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं ग्रामीण विभागों में रहते हैं और किसान कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं धान्य होता है या फिर फल होते हैं सब्जियां होती है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना एक बात है अच्छा भाव दिलाना एक बात है परंतु कई बार इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सही तरीके से उसका भंडारण किया जाए स्टोरेज किया जाए सही तरीके से उसका प्रसंस्करण किया जाए उसको प्रोसेस किया जाए या उसमें मूल्य संवर्धन किया जाए उसमें वैल्यू एडिशन की जाए तो हमारे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है और इसीलिए हमने लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में खाद्य प्रसंस्करण हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज हो या फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो ऐसे कई सारी चीजें हमने इसमें ऐड की है। अन्नदाताओं से अगर हम महिलाओं तक जाए हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं गांव में ये दीदियां रहती है लखपति दीदियां बन चुकी है या करोड़पति बनने की ओर अग्रसर है तो ये हमारी जो दीदियां हैं वह भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, परंतु उनके लाइवली

0: लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसे काम भी अब हमने जो है विकसित भारत जी राम जी में अलाउ किए हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कोई एक एंटरप्राइज करना चाहता है जिसके लिए कि उन्हें वर्कशेड की जरूरत है तो अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से वह वो वर्कशेड बना सकती है। कोई एसएचजी चाहता है कि हम एक नर्सरी रन करें जिससे कि प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिले, वह भी कर सकता है। तो हमारी दीदियां, हमारे युवा और हमारे अन्नदाता इन सभी के आजीविका के जरूरतों को केटर करने का जो सामर्थ्य इन 98 कामों में है जो कि हमारे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
1: श्रोता, हम आपको बता दें कि नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्यों को इनमें शामिल किया गया है। तो रोहिणी जी, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं तो जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इनका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना है या फिर इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और दीर्घकालीन आजीविका से भी जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाई गई है?
0: बिल्कुल सही कहा, 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो मिनिमम गारंटी दी गई है कि 125 दिन रोजगार मिलेगा। परंतु विकसित भारत जीराम जी यह कहता है कि हमारे दीदियों को या फिर हमारी महिलाओं को या फिर अन्नदाताओं को केवल 125 दिन का अकुशल रोजगार लेना ही उनका एस्पिरेशन नहीं है। वह चाहते हैं कि उनको दीर्घकालिक एक आजीविका के अवसर मिले और वो करने की क्षमता जो है विकसित भारत जीराम जी के कार्यों में है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे ग्रामीण विभागों की बदलती हुई जरूरतें अगर आप देखें तो अगर एक पैकेजिंग और ग्रेडिंग यूनिट भी अगर हम गांव में बनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के लिए काम आ सकता है, मिनी फ्लोर मिल्स बनाए जाए, मार्केट यार्ड्स बनाया जाए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कई विभागों में भारत दुनिया का बहुत बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है और अगर हमारे पास मिल्क चिलिंग प्लांट्स अगर बन जाए, क्लस्टर लेवल पे भी बन जाए, तो भी हमारे युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़कर के दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम एक टारगेट सेट करके बैठे कि हमें बहुत ही जल्दी अपने यहां से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए या फिर और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो है वो विकसित भारत जीराम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जीराम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जीराम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो अंत्योदय वाले सेक्शंस है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है। और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: रोहिणी जी, जैसा कि आपने भी बताया तो मैं आपसे यहाँ पर ये जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको विकसित भारत जीराम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स का एक फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से वह यह तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की तब जो है ग्राम सभा ही यह सूची बनाएगा कि ऐसे कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको कि यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस में उसे डिस्प्ले किया जाएगा और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके

0: ऐसे एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है। और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेकर वह भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें तो स्थानीय जरूरतों और तकनीकी रूप से व्यवहार परियोजनाओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर तकनीकी क्षमताओं का ये कहें कि अभाव है या फिर वहां पर सीमित है वो व्यवस्थाएं।
0: मंत्रालय या भारत सरकार जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो द्योतक बननी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज टू मेक द पीपल्स लाइव्स इजियर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की, उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह 2 प्रकार से किया जा रहा है। मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है, वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहां पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहां पर कंस्ट्रक्ट करने से वहां सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा। तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है, परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा। वह एसेट्स के दोहराव को भी रोकेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इसकी वजह से छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई टेक्निक फेल हो जाती है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी।
1: श्रोताओं को बता दें कि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से डिजिटल निगरानी और विभिन्न योजनाओं के निवेश के अभिसरण की बात कही गई है, और ये प्रणाली जमीन पर कामों के दोहराव को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साबित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस तरह से आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी 38 कार्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसमें कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे?
0: 38 काम ऐसे है जो पहली बार यह कैटेगरी ऐड की गई है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। यह एक सेपरेट कैटेगरी कभी नहीं थी जिसमें कि आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए, ये पहली बार यह एक सेपरेट कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें कि 38 काम है। हमारा देश जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है। कोस्टल एरियाज है जहां पे साइक्लोन प्रोन कुछ एरियाज है, भूस्खलन के लिए वल्नरेबल कुछ एरियाज है, जहां पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए हमने यह 38 काम जो है इसमें ऐड किए गए हैं। कुछ काम इसमें ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके चलते फॉरेस्ट फायर्स की भी घटनाएं कई बार सामने आती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के मेजर्स जैसे कि फायर लाइंस हो गए, फ्यूल बफर जोन्स हो गए, वो भी अब ऐड किए गए हैं। जैसे कि फ्लड रिलीफ के शेल्टर्स, कई बार फ्लड आता है तो स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता है, वो ना हो इसीलिए फ्लड रिलीफ शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स का स्ट्रेंथनिंग, ऐसे भी कई सारे काम जो।
1: रोहिणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है, निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है या करेगी?
0: सरकार ने विकसित भारत जीराम जी के एक्ट कई सारे गुणवत्ता मूलक गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है ऐसा मैं कहूंगी। जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है। पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है जो कि एक्ट का ही एक पार्ट है। और सोशल ऑडिट की जो व्यवस्था है जिसमें कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जी राम जी में उनकी निगरानी करेंगे तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा। ऑल्सो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जैसे कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसका त्रिस्तरीय जियो टैगिंग करना पड़ता है, जैसे कि काम होने से पहले एक बार, जब काम हो रहा है तब एक बार, और काम होने के बाद भी एक बार जियो टैग करके फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की आपने बात की तो एक डिजिटल निगरानी के लिए वह एक बहुत अच्छा साधन बनेगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से पंचायतों में कौन से कैटेगरी के कितने कार्य जो है वो चल रहे हैं, कितने अभी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर ये निगरानी की व्यवस्था और भी बेहतर होगी और राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है कर रही है। अभी हमारा नेशनल लेवल पे 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई और फिर राज्यों में भी हुआ राज्य लेवल पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारा NIRDPR का संस्थान है उसके माध्यम से भी बिल्कुल गांव लेवल तक की कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो सरपंचस है, हमारे पूरे देश में जितने प्रधान और सरपंचस हैं उनके लिए भी हमने पंच सम्मेलन का एक इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि आज तक लाखों जो है एरियाज में पंच सम्मेलन जो है किए गए हैं जिससे कि हमारे सरपंच और प्रधान भी जाने कि उनका विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन को भी स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती जब भी कोई आपदा आती है और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा? ये
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशंस आपको एक्ट देता है उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलेमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125 वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से अगर आज भी आप मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में आपदा के लिए हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो कहां पर आई है, कहां पर लोगों ने काम किया है, कहां पर कौन कौन से रिलैक्सेशन अवेल किया है, तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है और हम भी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं, तो अगले वर्षों में या अगले दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या यह सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उस पर भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे?
0: विकसित भारत जी राम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि विकसित भारत बनाना है और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव तो विकसित भारत बनाने का ही है और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 साल का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे आपने कहा अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीबीजी राम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी, हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग

0: है वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत। जी राम जी,
1: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करनी चाहिए?
0: 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है ऐसा मैं कहूंगी। विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों को केवल ना देखें, विकसित भारत जीराम जी में जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उन्होंने भी विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जीराम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भारत की ओर जाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा।
1: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं?
0: निखिल जी, विकसित भारत जीराम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है, इसीलिए आपने जो पूछा वह बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीबी जीराम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार भी उसके साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, हमारी दीदियां जैसे मैंने कहा लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है, जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही है तो वीवी जी राम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास पा सकते हैं, कौशल पा सकते हैं और उसको कई सारे उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं। मुद्रा लोन अवेल करके वह कई सारे अपने खुद के एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने उठाना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे से, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में तमाम विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद निखिल जी,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम रसधारा। सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं पुराना मंदिर फिल्म से, आवाज है आशा भोसले की।

0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे टेलीफोन फिल्म के इस गाने को। आकाशवाणी उबरस इस वक्त आप सुन रहे हैं रसधारा कार्यक्रम, और ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है सवेरे वाली गाड़ी।

और अब सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, इसे हमने लिया है पत्थर फिल्म से, आवाज आशा भोसले की।

हम आकाशवाणी उपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां की राग मियां की तोड़ी शहनाई पर बजाई हुई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शहनाई पे बजाई राग मियां की तोड़ी। कलाकार थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57

0: बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, समय रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।

11:05 हो रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।